मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। यह एक पुरानी कहावत है जो हमें बताती है कि सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुनने से हमें जानकारी मिलती है लेकिन वह जल्दी ही भूल जाती है। सुनने से हमें नए विचारों और जानकारी का पता चलता है लेकिन उसे याद रखने के लिए हमें उसे दोहराना होता है। देखने से हमें जानकारी याद रहती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें उसे कैप्चर कर लेती हैं और हम उसे आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उसे वास्तव में समझ जाते हैं। अभ्यास करने से हमें अनुभव मिलता है और हम उसे आसानी से याद रख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है।

सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज को एक नई उम्मीद, नई हिम्मत और नई मुस्कान के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह हमें एक और मौका देती है बेहतर बनने का और बेहतर करने का। आप सभी को एक खूबसूरत और सफल दिन की शुभकामनाएं। सुप्रभात, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर स्वागत है। आज है सितंबर 2026 की 10 तारीख और हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हो चुके हैं और इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय एवं तकनीकी अभियंता गोलो कालो और अपनी आवाज के साथ मैं आपकी आरजे बिंदु दिंदोमांच। श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रभातकालीन प्रसारण सभा। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, अब से लेकर सुबह के 11:10 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद 6:10 पर प्रसारित होगा भक्ति गीत का खास कार्यक्रम। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो भाषा में समाचार, जिसके बाद 6:45 पर हम सुनेंगे सुबह सवेरे का खास कार्यक्रम। सुबह के 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी भाषा में समाचार। 7:15 पर प्रसारित होगा मॉर्निंग इंफोटेनमेंट का कार्यक्रम, बताएंगे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और खबरें लोकल दिल्ली से। 7:35 पर आप सुनेंगे तगिन भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:40 पर हम लाएंगे आपके लिए सदाबहार का कार्यक्रम, देंगे आपको वेदर अपडेट्स, सुनाएंगे आपको कुछ बेहतरीन गीत। ठीक 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद 8:30 पर आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ

0: न्यूज के लिए। 8:40 पर श्रोताओं हम लाएंगे हेलो ईटानगर का कार्यक्रम, जिसके बाद ठीक 9 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। 9:10 पर प्रसारित होगा फिल्मी गपशप का कार्यक्रम, जिसके बाद ठीक 10 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। जिसके बाद श्रोताओं ठीक 10:10 पर हम लाएंगे आपके लिए रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम, जहां पर वही सारे गीत प्ले होते हैं जो आपके दिल के ही करीब। तो आप तुरंत हमें मैसेज कीजिए, नंबर है हमारा 9436887808। इस नंबर पर हमें अपने डेडिकेटेड सॉन्ग्स, अपने पसंदीदा गीत, अपने मैसेजेस, अपने कॉम्प्लीमेंट्स लिख भेज सकते हैं हमें, और हम उन्हें आपके लिए प्ले करेंगे, हम आपसे बात करेंगे हमारे रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में। श्रोताओं ठीक 11 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो ये थी आज के हमारे प्रभातकालीन प्रसारण सभा की रूपरेखा। अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन की शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सुबह की इस पवित्र और सुहानी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय है हमारा विशेष प्रस्तुति भक्ति गीत, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की महिमा, श्रद्धा और प्रेम से भरे मधुर भजन और भक्ति गीत। इस सुप्रभात में जब प्रकृति भी धीरे धीरे जाग रही है, आइए हम भी अपने मन को पवित्र विचारों और भक्ति रास में भर लें। कुछ पल के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का भक्ति गीत और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप सब पर बने रहे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए।

0: दोस्तों, ये था हमारा भक्ति गीत का कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे गालो भाषा में समाचार। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक।
1: जी जी आकाशवाणी ईटानगर है तनगा दम प्रोग्राम पर जीत पोलो का आलो पीने नाना गए मैं तो आ रहा जगो गलो मिंके ना कुमा मिंजी दू मिंके ना कुमा मिलने जिनेंगो जुम तो लंब। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधा कृष्णा अरुणाचल प्रदेश मोको एम कोदे इजी ओक कल्चर नियम नीति अवा ओक बॉर्डर स्टेट बरता दूला इंडिया का बॉर्डर एंड कारा दूला इंडिया का दोरका यारून स्टेट गोबरदून अला मेन दूला अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर पुर्द नाम देश का सिक्योरिटी एंड पुर्दी का दूना अलामेंटू और लेजिस्लेटिव असेंबली का कवालो हालिक दूला वाइस प्रेसिडेंट में पॉलिटिकल पार्टीज का दम ने असेंबली लो दूरक जिदाक लो रोमिन बूमिन जिमा व हका दर का मिंजी दूला असेंबली का होमोयम लॉस मुमा व असेंबली लो का काम काज रिनाम अबा एमेंटम तू और वाइस प्रेसिडेंट में अरुणाचल एम ने फॉरेस्ट और नेचुरल एनवायरमेंट एम बचाए दूला काम काज रिनाम लगा व कोई तू ओक कीवी प्रोडक्शन एम चिंग कोई दूला अरुणाचल प्रदेश हारने होमेलो इंटरनेशनल मार्केट लो हालन रल पर अला मेंतु मरो नर्म CP राधा कृष्णा मु निसी गदग दोनी पोलो गंग न्यादर नाम लो इतानगर लो हालिक दूला गंग लो कुमलक जोलक एम चिन ऋतु ओक मु एम मेरको इंडिजिनियस गुरुकुल सिस्टम निसी गदग कल्चर दुबई ओक मुनुग गोंकु आगम एम अवगदम ने मेंतम ऋतम को एम चिंग कातम तु वाइस प्रेसिडेंट मु गुजा शिक्षा देना और निजर यामे गदम ने साइंस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्किल अबा एम चेलन दूला अलग अनाबो गदग अगोम कल्चर और दोई नीतम एम मेगाप्ल नाम लगाब मेन्तु लोदुम अलोलो वाइस प्रेसिडेंट में दोनी पोलो मिशन गदग गुम्मा गामा ने स्कूल लोचिन हालक तू इंडिया।

नमस्कार दोस्तों, सुबह की पहली रोशनी के साथ, ठंडी सी हवा और एक नई उम्मीद के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और वक्त है कार्यक्रम सुबह।

सवेरे का। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरशे मंच, और आज की सुबह हम बात करेंगे योगा, एक्सरसाइज और सेहत की, लेकिन सिर्फ शरीर की नहीं, दिल और दिमाग की भी। सुबह के वक्त बहुत खास होता है। ये वो पल होता है जब दुनिया थोड़ी सी शांत होती है और हम अपने आप से मिल सकते हैं। कभी जिंदगी भारी लगती है, कभी पढ़ाई, थीसिस, एग्जाम्स, रिलेशनशिप्स या एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर दिल को थका देता है, लेकिन एक छोटा सा रूटीन, थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी वॉक दिल को वापस हल्का कर देते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं होता, ये अपने आप को ये कहने के लिए होता है कि मैं अपनी केयर करता हूँ या मैं अपना केयर करता हूँ। दोस्तों, जब हम रोज थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, हमारे हार्ट स्ट्रांग होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी एक्टिव फील करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो अंदर होता है। एक्सरसाइज से ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरली मूड को अपलिफ्ट करते हैं। इसीलिए जब हम उदास होते हैं, एंशियस होते हैं या अकेला महसूस करते हैं, एक सिंपल वॉक भी थेरेपी जैसा काम करती है। शायद इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सुबह की सैर हजारों बीमारियों की दवाई। आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक प्यारा सा गीत फिल्म तशन से फलक तक।

दोस्तों आजकल हम सब बिजी हैं, किसी को ऑफिस, किसी को यूनिवर्सिटी, किसी को घर की जिम्मेदारी, किसी को स्कूल, लेकिन हेल्थ के लिए जिम मेंबरशिप होना जरूरी नहीं। वॉकिंग, लाइट जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, डांस, स्पोर्ट्स, ये सब एक्सरसाइज है। जो आपको खुशी दे वही बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करिए, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो बैडमिंटन खेलिए, अगर आपको शांति पसंद है तो योगा कीजिए। मूवमेंट का मतलब है अपनी बॉडी को जिंदा महसूस करना। योगा की बात करें तो योगा सिर्फ आसन नहीं, एक जीने का तरीका है। योगा हमें सिखाता है पेशेंस, बैलेंस और एक्सेप्टेंस। योगा से स्ट्रेस कम होता है, स्लीप बेटर होती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है और इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। जब हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। न पास्ट की चिंता, न फ्यूचर का डर, सिर्फ अभी का पल। और कभी कभी यही सबसे बड़ा सुकून होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम रेगुलर योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी स्ट्रांग फील करती है, पोस्चर इम्प्रूव होता है और हम अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ये एक साइलेंट मैसेज होता है जो हम खुद को देते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी हेल्थ इम्पोर्टेंट है।

जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं तब दुनिया भी हमें थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। हेल्थ सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, छोटी छोटी हैबिट्स से बनती है। सुबह एक ग्लास गर्म पानी, हेल्दी ब्रेकफास्ट, थोड़ी सी सनलाइट, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना और रात को अच्छी नींद लेना, ये सब मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग लाइफ बनाते हैं। वेट लॉस हो या फिटनेस, ये कोई रेस नहीं है। स्लो प्रोग्रेस ही सेफ प्रोग्रेस है। अपने शरीर को पनिश करना नहीं, प्यार से गाइड करना होता है, जैसे हम किसी छोटे दोस्त या पेट का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं एक गीत। हम सुनेंगे फिल्म थ्री इडियट्स का ये गीत, बहती हवा सा था वो।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब हम मूवमेंट करते हैं, एंजाइटी कम होता है, सैडनेस हल्का होता है और माइंड क्लियर होता है। बहुत लोग थेरेपी के साथ योगा और एक्सरसाइज को कंबाइन करते हैं क्योंकि ये हीलिंग को सपोर्ट करता है। अगर आप भी अपने लाइफ में नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो तो रूटीन को अपना दोस्त बना लो। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको वापस खुद तक ले आएगी। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना सोचते हैं, इतना केयर करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप हेल्दी और स्ट्रांग हो तभी आप अपने सपने, अपने पढ़ाई, अपने रिश्ते सबको पूरा एनर्जी दे पाएंगे। योगा और एक्सरसाइज सेल्फिश नहीं होते, ये सेल्फ लव होता है। आप चाहे नाइट आउल हो, बिजी स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अपने रूटीन में थोड़ा सा मूवमेंट जरूर रखिए। सुबह या शाम जो टाइम सूट करे, एक छोटा स्टेप भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। आज अगर आप सिर्फ 10 मिनट वॉक करते हो, कल वो 20 मिनट बन जाएगा। धीरे धीरे बॉडी भी अडेप्ट करेगी, माइंड भी स्ट्रांग होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर मत कीजिए। हर बॉडी अलग होती है, हर स्ट्रगल अलग होता है, हर प्रोग्रेस अपनी होती है। आप बस अपने कल से बेटर बनने की कोशिश करिए। दोस्तों, सुबह का सूरज हर दिन नई शुरुआत देता है। अगर कल मिस हो गया कोई बात नहीं, आज फिर शुरू करिए। अपने आप को माफ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और एक हेल्दी रूटीन की तरफ छोटा सा कदम बढ़ाइए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ दोस्तों, हमारा सुबह सवेरे का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। याद रखिए, सेहत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन थोड़ा सा एफर्ट से जरूर बनेगी। योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी नींद और सबसे बढ़कर अपने आप के लिए दया, ये ही है एक खुश जिंदगी की बुनियाद। दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे मांच और आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम आपातानी श्रोताओं के कार्यक्रम का, आपातानी भाषा में समाचार। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के साथ।

मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का। सुबह की चाय गर्म है, मुस्कान, मौसम का मूड थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है और हम लेकर आए हैं आपके लिए एकदम फ्रेश मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट डोज। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मंच, और अगले कुछ मिनट हम बात करेंगे उन खबरों की जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं है बल्कि हमारे आसपास की जिंदगी, इंसानियत, कल्चर और सोसाइटी से जुड़ी कहानियां हैं। तो चाय का एक सिप लीजिए और शुरू करते हैं आज का सफर। और इससे पहले कि हम खबरों के सिलसिले में उलझ जाएं, मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत शेयर करना चाहती हूं। हम सुनेंगे दोस्तों फिल्म दिल चाहता है से कोई कहे कहता रहे।

दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको आज के स्थानीय मुख्य खबरें। सबसे पहले एक जरूरी और उम्मीद भरी खबर, मेचुका से डिब्रूगढ़ तक दो क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट्स को टाइमली मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर इमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया। 8 सितंबर को मेचुका से दोनों पेशेंट्स को IAF हेलीकॉप्टर के जरिए आसाम के मोहाबरी तक ले जाया गया, जहां से उन्हें डिब्रूगढ़ के हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया। इस ऑपरेशन में वेदर भी एक चैलेंज था और सनसेट से पहले का टाइम भी लिमिटेड था, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मेडिकल टीम्स ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में एक टीम की असली स्ट्रेंथ सामने आती है। इस पूरे ऑपरेशन में वही टीम वर्क नजर आया। हम दुआ करते हैं कि दोनों पेशेंट्स जल्द सेहतमंद हो। अब चलते हैं तवांग की तरफ। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अपने एंसेस्टर्स की कहानियों को जानने का शौक है, तो ये खबर आपको जरूर पसंद आएगी। मोनपा मेट्स मीडिया यानी MMM 20 सितंबर को तवांग में सॉल्ट अट्रिब्यूट ट्रैकिंग टू आर एंसेस्टर्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इस ट्रैक का मकसद सिर्फ पहाड़ों पर चलना नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है उन एंसेस्टर्स की जो महीनों तक कठिन रास्तों पर ट्रैकिंग करके तिब्बत तक जाते थे और माउंटेन साल्ट के लिए बार्टर ट्रेड करते थे। तो सोचिए जरा, आज हम किसी चीज की जरूरत हो तो फोन उठाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी का वेट करते हैं, और हमारे एंसेस्टर्स महीनों की जर्नी, पहाड़ों के मुश्किल रास्ते और फिर ट्रेड, ये ट्रैक उनकी उन्हीं जर्नीज को याद करने और यंगर जनरेशन को अपनी कल्चरल रूट से जोड़ने की एक खूबसूरत कोशिश है। और MMM का फोकस सिर्फ कल्चर तक लिमिटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग और एस्पायरिंग लोकल गाइड्स को प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देने पर भी काम कर रहा है। मतलब हेरिटेज भी, लर्निंग भी और यूथ एम्पावरमेंट भी। दोस्तों, आगे हम और खबरें लाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक और गीत। हम सुनेंगे फिल्म बचना ए हसीनों से लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज में आहिस्ता आहिस्ता।

0: attention. Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट मैसेज। अरुणाचल प्रदेश के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पर वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने लेजिस्लेटिव असेंबली को एक स्पेशल सेशन में

कहा कि देश की सिक्योरिटी अरुणाचल के बॉर्डर एरियाज के प्रोटेक्शन से क्लोजली लिंक्ड है। उन्होंने लेजिस्लेटर्स से अपील की कि पब्लिक सर्विस को इलेक्टोरल सक्सेस से ऊपर रखा जाए। सिंपल वर्ड्स में, इलेक्शन जीतना एक बात है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट और रेस्पेक्ट जीतना उससे कहीं बड़ी बात है। वाइस प्रेसिडेंट ने अरुणाचल के डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, टूरिज्म और हाइड्रो पावर पोटेंशियल की भी बात की। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने भी स्टेट की इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी ग्रोथ को हाईलाइट किया। उनके मुताबिक पिछले एक दशक में रोड कंस्ट्रक्शन, रूरल कनेक्टिविटी और नेशनल हाईवे नेटवर्क में काफी एक्सपांशन हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर भी दिया गया, नेचर और इंडिजिनस कल्चर को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और ये बात अरुणाचल जैसे स्टेट के लिए और भी मीनिंगफुल है, जहां माउंटेन्स, फॉरेस्ट और इंडिजिनस ट्रेडिशंस एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। और अब एक सीरियस खबर, यूपीआर सेशन कोर्ट ने बांदरदेवा डबल मर्डर केस में नाबाम तायो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2024 में एक इंसिडेंट में ताया की वाइफ और एल्डरली मर्डर इन लॉ की वुडन लॉक से असॉल्ट के बाद मौत हो गई थी। कोर्ट ने केस की सीरियसनेस को देखते हुए कन्विक्शन के बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सजा दी। डेथ पेनल्टी की डिमांड भी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अवेलेबल एग्रवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता। कोर्ट ने विक्टिम्स के नेक्स्ट ऑफ किन के लिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत कंपनसेशन प्रोवाइड करने का डायरेक्शन भी दिया। ये केस हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि गुस्से और वायलेंस का एक पल कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की मॉर्निंग इंफरटेनमेंट का कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम, तागिन भाषा में समाचार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सदाबहार में। दोस्तों, सदाबहार वो कार्यक्रम है जहां हम आपको देते हैं वेदर अपडेट्स, बताते हैं आपको ईटानगर के मौसम का हाल और साथ ही बात करते हैं हमारे क्लाइमेट, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। सुबह का वक्त है तो सबसे पहले जान लेते हैं आज की ईटानगर का मौसम का क्या क्या है हाल। आज का मौसम, आज सुबह ईटानगर में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आसमान क्लाउडी रहेगा और गर्मी भी महसूस होगी। फिलहाल टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रियल फील करीब 34 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, जबकि रात में मिनिमम टेम्परेचर करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह 8 से 10 बजे के बीच बारिश की चांसेस रिलेटिवली ज्यादा है और दोपहर तक टेम्परेचर 33 से 34 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो अगर आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं, छाता साथ रखना एक अच्छा आइडिया रहेगा। साथ ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और एक जरूरी बात, गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से स्ट्रेनस एक्टिविटी करते वक्त डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का रिस्क हो सकता है, इसीलिए पानी पीते रहिए, धूप में अननेसेसरी एक्सर्शन से बचिए और अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। आज रात भी आसमान पार्टली से मोस्टली क्लाउडी रह सकता है और लेट नाइट बारिश के चांसेस है। अगले कुछ दिनों की बात करें तो वेदर में बारिश का सिलसिला बना रहने की संभावना है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे मौसम से क्लाइमेट तक, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा फिल्मी ब्रेक। हम सुनेंगे ये बेहतरीन संगीत फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से शान, प्रिया और नीरज की आवाज में, दिल दी नजर।

दोस्तों, अभी अभी हमने सदाबहार के इस कार्यक्रम में बात किया आज के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मौसम और क्लाइमेट में आखिर फर्क क्या है? आज बारिश हुई, कल धूप निकली, परसों ठंड पड़ गई, ये है वेदर, यानी किसी जगह का शॉर्ट टर्म मौसम। लेकिन जब हम कई सालों और कई डेकेड्स के टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स और दूसरे पैटर्न्स को देखते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट की। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आज अगर ईटानगर में बहुत गर्मी है तो वो वेदर है, लेकिन अगर सालों के डेटा से पता चले कि किसी रीजन का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज सिर्फ थर्मामीटर पर बढ़ते नंबर की कहानी नहीं, इसका कनेक्शन हमारे फॉरेस्ट्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, हेल्थ और पूरे इकोसिस्टम पे है। सोचिए, एक फॉरेस्ट को जहाँ पेड़ है, उन पर डिपेंड करने वाले इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मिट्टी है, पानी है, सनलाइट है, सब अपनी अपनी जगह एक रोल प्ले कर रहे हैं। यही इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, इकोसिस्टम। एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, वो कार्बन एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन साइकिल का

0: हिस्सा है, मिट्टी को होल्ड करता है, रेनफॉल और वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है और काउंटलेस बर्ड्स और इंसेक्ट्स को शेल्टर भी देते हैं। अब अगर फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा ट्रीज कट होने लगे तो इम्पैक्ट सिर्फ ट्रीज पर नहीं पड़ेगा, बर्ड्स का हैबिटेट कम होगा, एनिमल्स के फूड सोर्सेस अफेक्ट होंगे, सोइल इरोजन बढ़ेगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो जाएगा। यानी नेचर में कुछ भी कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, हर एक चीज एक दूसरे चीज से इंटरकनेक्टेड है। हम अक्सर क्लाइमेट चेंज को फ्यूचर की प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज भी दुनिया के कई हिस्सों में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, फ्लड्स, ड्रोट्स, वाइल्ड फायर्स और इकोसिस्टम्स पर प्रेशर के रूप में देखा जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जैसे इकोलॉजिकली रिच रीजन में एनवायरमेंट की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा है। यहाँ के माउंटेन, फॉरेस्ट्स, रिवर्स और बायोडायवर्सिटी सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये लोगों की लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, कल्चर और डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, इसका मतलब है वाटर बचाना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को स्पेस देना, वेस्ट कम करना और नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबल तरीके से रहना। अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन हर इंसान अपने कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं। जब जरूरत हो तो लाइट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद करिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना पॉसिबल हो अवॉइड कीजिए, पानी वेस्ट ना करें, लोकल ट्रीज और ग्रीन स्पेसेस को प्रोटेक्ट कीजिए, कचरा सही जगह डिस्पोज कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट, नेचर को सिर्फ रिसोर्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्योंकि हम नेचर के बाहर नहीं रहते, हम खुद नेचर का एक हिस्सा है। तो आज के वेदर अपडेट से लेकर क्लाइमेट और इकोसिस्टम तक की हमारी छोटी सी जर्नी का एक सिंपल सा मैसेज है कि मौसम बदलता है, क्लाइमेट बदलता है, लेकिन नेचर के साथ हमारा रिश्ता बना रहना चाहिए। आज जब आप बाहर निकले और किसी पेड़ की छांव मिले, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, ये पेड़ सिर्फ हमें शेड नहीं दे रहा, ये किसी पक्षी का घर हो सकता है, किसी इंसेक्ट की दुनिया हो सकती है, हवा का प्यूरिफायर हो सकता है और इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट करी हो सकता है। नेचर की खूबसूरती इसी कनेक्शन में है। तो दोस्तों, प्रकृति को एंजॉय भी कीजिए, समझिए भी और प्रोटेक्ट भी कीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मंच और आप सुन रहे हैं सदाबहार का हमारा ये कार्यक्रम। तो दोस्तों, अब चलिए सदाबहार के इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक बेहतरीन सा गीत। हम सुनेंगे फिल्म ये जवानी है दीवानी से चटपटे से सॉन्ग घाघरा। आशा करते हैं कि इसी गीत के साथ आप इस मॉर्निंग को इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के
0: बैठी। साथ ही दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे इस सदाबहार के इस गीत के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद आप मुलाकात करेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए।
2: कल सुबह अफसोस होगा।
3: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल, इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
3: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।

0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
6: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत

0: 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $30 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिले में और लॉन्गटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया इंडोनेशिया बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said, these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakulam,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां बात होती है दिल से दिल तक। इससे पहले आप बने हुए थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। और वक्त हो चला है श्रोता दोस्तों कार्यक्रम हेलो ईटानगर का। दोस्तों, हेलो ईटानगर के इस कार्यक्रम में आज हम बात करना चाहते हैं नॉस्टैल्जिया के बारे में। तो क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत करें एक बेहतरीन सा गीत के साथ। हम सुनेंगे फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से पीलू।

दोस्तों, कभी आप ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और अचानक रेडियो पर आपको कोई पुराना फेवरेट गाना बजने लगे और बस एक पल में आप प्रेजेंट से निकल कर कई साल पीछे पहुंच जाते हैं। आपको याद आता है वो घर, वो किचन, माँ के साथ खाना बनाना, हाथ में चम्मच पकड़ के उसको माइक्रोफोन बनाकर गाना गाना, और फिर अचानक आप रियलाइज करते हैं कि अरे मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। इसी फीलिंग को कहते हैं नॉस्टैल्जिया, एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम सिर्फ किसी पुरानी बात को याद नहीं करते, हम उस वक्त की फीलिंग को दोबारा महसूस करते हैं। कभी खुशी, कभी हल्का सा दर्द, कभी किसी अपने की याद, और कभी एक अजीब सी वार्मथ, जैसे दिल कह रहा हो कि काश वो वक्त थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता। तो नॉस्टैल्जिया होता क्या है? इंटरेस्टिंग बात है कि नॉस्टैल्जिया शब्द का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से माना जाता है, नॉस्टोस यानी रिटर्न और एल्गोस यानी पेन। यानी शुरुआत में नॉस्टैल्जिया का मतलब कुछ ऐसा था कि घर लौटने की तरफ। वक्त के साथ इसका मीनिंग बदला और आज नॉस्टैल्जिया को हम पास्ट के किसी चेरिश्ड मोमेंट के लिए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग के रूप में समझते हैं। और नॉस्टैल्जिया सिर्फ अच्छी मेमोरीज से नहीं आता, कभी कभी मुश्किल वक्त की मेमोरीज भी हमें नॉस्टैल्जिक बना सकती है। लेकिन मेमोरीज एक्टिवेट कैसे होती है? सबसे पावरफुल ट्रिगर्स में से एक है हमारे सेंसेस। एक पुरानी खुशबू, किसी पर्टिकुलर परफ्यूम की स्मेल, मिट्टी की खुशबू, पुराने घर के किचन की स्मेल, किसी गाने की ट्यून, किसी जगह का व्यू या किसी खास फूड का टेस्ट, और दिमाग के किसी कोने में रखी पुरानी फाइल अचानक खुल जाती है। आपने देखा होगा कि कभी एक गाना सुनते ही आपको स्कूल का एनुअल फंक्शन याद आ जाता है, कभी किसी डिश की खुशबू से नानी का घर याद आ जाता है, कभी एक पुरानी फोटोग्राफ देखकर पूरा हॉलीडे याद आ जाता है। ये है मेमोरी और इमोशन का कनेक्शन। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नॉस्टैल्जिया क्यों बढ़ता है? शायद इसीलिए क्योंकि हमारे पास यादों का कलेक्शन बढ़ता जाता है। बचपन में लाइफ का हर दिन रिलेटिवली नया होता है, नए फ्रेंड्स, नए स्कूल, नए डिस्कवरीज, फिर कॉलेज, फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी, पहली इंडिपेंडेंट जर्नी, शादी, फैमिली, बच्चों का ग्रोइंग अप। लाइफ के हर स्टेज का के साथ मेमोरीज जुड़ती जाती है। और फिर एक वक्त आता है जब हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पास्ट एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन बन चुका होता है। इसीलिए एज के साथ हमारे पास पीछे मुड़कर देखने के लिए ज्यादा कुछ होता है। नॉस्टैल्जिया सिर्फ इमोशन नहीं, हेल्पफुल भी हो सकता है। कभी कभी पास्ट को याद करना हमें प्रेजेंट में बेटर फील कराता है। एक अच्छी मेमोरी हमें याद दिलाता है कि मैं पहले भी मुश्किल वक्त से निकला हूँ। इससे कॉन्फिडेंस मिल सकता है। कभी नॉस्टैल्जिया हमें अपनी आइडेंटिटी याद दिलाता है, हम कहाँ से आए, किन लोगों ने हमें शेप किया, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी नॉस्टैल्जिया बस मूड को हल्का कर देता है। आपका दिन खराब हो रहा हो और कोई पुरानी फेवरेट सॉन्ग बज जाए, बस 2 मिनट के लिए आप स्माइल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉस्टैल्जिया की भी एक दूसरी साइड है। अगर हम बार बार सिर्फ पास्ट में रहने लगे, अगर हर कंपैरिजन को हो कि पहले सब बेहतर था, तो हम प्रेजेंट की खूबसूरती को मिस कर सकते हैं। पास्ट हमें कंफर्ट दे सकता है, लेकिन पास्ट में परमानेंटली रहना नहीं है। यादें घर जैसी होनी चाहिए, जहां हम कभी कभी लौट कर जाए, थोड़ा सुकून ले और फिर वापस प्रेजेंट में आ जाए। एज बढ़ने के साथ नॉस्टैल्जिया और मीनिंगफुल हो सकता है। जब हम अपने आसपास के कुछ लोगों को लूज करते हैं, फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स अलग सिटीज में चले जाते हैं, या कुछ रिलेशनशिप सिर्फ मेमोरीज में रह जाते हैं, तब पुरानी यादें एक

इमोशनल कनेक्शन बन सकती है। एक पुरानी फोटोग्राफ, एक फेमिलियर सॉन्ग, एक पुरानी कहानी कभी कभी इंसान को ये एहसास दिलाती है कि मेरी जिंदगी की कहानी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब घर में ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डरली फैमिली मेंबर्स अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाने लगे तो उन्हें रोकना मत। हाँ, हमने शायद वो स्टोरी पहले भी सुनी हो, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ स्टोरी नहीं, वो उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। उनकी आवाज में वो वक्त जिंदा है। तो अगली बार जब कोई पुराना गाना आपको अचानक 10, 20 या 30 साल पीछे ले जाए, उस मेमोरी को एक पल के लिए फील कीजिए, उस इंसान को याद कीजिए, उस जगह को याद कीजिए, उस वक्त को याद कीजिए और फिर प्रेजेंट में वापस आइए। क्योंकि एक खूबसूरत बात ये भी है कि आज जो पल हम जी रहे हैं, कल वही नॉस्टैल्जिया बनने वाला है। आज की मॉर्निंग चाय, आज का ट्रैफिक, आज रेडियो सुनते हुए किसी अपने के साथ की गई बात, आज का कोई छोटा सा जोक, आज की कोई छोटी सी खुशी, हो सकता है कि कुछ साल बाद आप इन्हीं मोमेंट्स को याद करके कहें कि वो वक्त भी क्या खूबसूरत था। तो दोस्तों, पास्ट को याद रखिए, लेकिन प्रेजेंट को जीना मत भूलिए। यादें हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं और प्रेजेंट हमें मौका देता है कि हम कल के लिए नए यादें, कल के लिए हम नए यादें कैसे बनाएं। आप सुन रहे हैं दोस्तों हमारा कार्यक्रम हेलो ईटानगर। आशा करते हैं कि आज का हमारा ये टॉक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। मैं आपको बता दूं कि हम कुछ ही देर बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। और चलिए अब हेलो ईटानगर के इस कार्यक्रम का अंत करते हैं एक बेहतरीन सा गीत के साथ। हम सुनेंगे फिल्म एयरलिफ्ट से अरिजीत सिंह की आवाज में सोच ना सके।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और मैं हूं आपकी आरजे, आपकी रेडियो साथी मंच। और वक्त है हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप और फिल्मी सॉन्ग्स का। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें याद किया जाता है। और 2013 में, क्षमा कीजिए, 2003 में ये फिल्म तेरे नाम उन्हीं फिल्मों में से एक है। सलमान खान और भूमिका चावला स्टारर सतीश कुमार की ये इंटेंस लव स्टोरी थी राधे और निर्जरा की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, जुनून है, जुदाई है और एक गहरा दर्द भी। फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था इसका म्यूजिक। और क्या जबरदस्त एल्बम था, हिमेश रेशमिया के सोलफुल कंपोजिशन, साजिद वाजिद के कंट्रीब्यूशन, समीर और जलीस शेरवानी के लिरिक्स और उदित नारायण, आलका याग्निक, सुखविंदर सिंह जैसे सिंगर्स की आवाज। गीत जैसे तेरे नाम ओढ़नी, तुमसे मिलना ओ जाना, क्यों किसी को लगन लगी, हर गाने का अपना मूड, अपनी कहानी और अपनी याद है। और शायद इसी वजह से इतने साल बाद भी तेरे नाम का म्यूजिक सुनते ही 2000s की वो फिल्मी रोमांटिक दुनिया आंखों के सामने आ जाती है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में कोई इंटरप्शन नहीं, कोई बात नहीं, बस एक के बाद एक तेरे नाम का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और चलिए वापस चलते हैं उस दौर में, 2003 की, सलमान खान, भूमिका चावला और तेरे नाम।

तो दोस्तों ये थी हमारी आज की तेरे नाम फिल्म की नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। चलिए अब फिल्मी गपशप में बात हो जाती है, बात करते हैं बॉलीवुड की दुनिया की, जहां फिल्मों की दुनिया से मिलती है आपको फ्रेश अपडेट्स, थोड़ा गॉसिप, थोड़ा कंट्रोवर्सी और एंटरटेनमेंट का फुल तड़का फिल्मी गपशप का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्मी बातें। करीना कपूर ने बॉलीवुड की हर्ड मेंटालिटी पर उठाए सवाल। करीना कपूर खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड पर खुलकर बात की है, हर्ड मेंटालिटी। एक रीसेंट टाउन हॉल इंटरेक्शन में करीना ने कहा कि इंडस्ट्री में कभी कभी एक फिल्म हिट होती है और फिर सब लोग उसी फॉर्मूला के पीछे भागने लगते हैं। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा के एनिमल का जिक्र किया। उनका कहना था अगर एनिमल चल गई और उसमें वायलेंस था तो इंडस्ट्री का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता, चलो सब वायलेंस कर लेते हैं। करीना का मानना है कि ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज का ऑडियंस ट्रेलर देखता है, कंटेंट को जज करता है और वो फिल्म्स देखना चाहता है जो कुछ नया या थॉट प्रोवोकिंग ऑफर करे। और ऑनेस्टली ये बात इंटरेस्टिंग है, क्या बॉलीवुड में एक फिल्म का सक्सेस वाकई दूसरी फिल्म का के ट्रेंड्स डिसाइड करता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब चलिए बात करते हैं मिर्जापुर द मूवी की। मिर्जापुर का स्वैग बॉक्स ऑफिस पर जारी। पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिवेंदु स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग रन कर रही है। फिल्म ने इंडिया में अपना नेट कलेक्शन 137 करोड़ से ज्यादा कर लिया है और

अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का के रिपोर्टेड लाइफ टाइम कलेक्शन को भी क्रॉस कर दिया है। मतलब मिर्जापुर का पावर गेम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बॉक्स ऑफिस पर भी फुल ऑन छा रहा है और फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए तो फेमिलियर फेसेस की पूरी महफिल है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुगल, विजय और साथ में नए फेसेस भी। लगता है कि मिर्जापुर की दुनिया में कालीना भैया का राज अभी खत्म नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दृश्यम 3 विजय सालगांवकर इज बैक। और अब वो आदमी जिसके पास हर सवाल का एक जवाब होता है, विजय सालगांवकर। अजय देवगन एक बार फिर दृश्यम फ्रेंचाइजी के थर्ड इंस्टॉलमेंट दृश्यम द कंक्लूजन में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर लॉन्च पर अजय देवगन ने एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया। हिंदी वर्जन की स्टोरी मलयालम फिल्म दृश्यम 3 से कम्प्लीटली डिफरेंट है। यानी अगर आपने मोहनलाल वाली दृश्यम 3 देखी है तो भी अजय देवगन की फिल्म में ट्विस्ट्स आपको सरप्राइज कर सकते हैं। ताबू और श्रेया सरन भी वापस आ रही है, जबकि प्रकाश राज और जयदीप अलावट नए एडिशन्स हैं। अब सवाल ये है कि विजय सालगांवकर इस बार अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार पुलिस विजय से एक कदम आगे होगी या विजय फिर से सबको कदम पीछे छोड़ देगा। फिल्म के मेकर्स के मुताबिक दृश्यम द कंक्लूजन विजय की कहानी का फाइनल चैप्टर है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पर चलते हैं। एक्टर शोभिनाव सत्या की जो हनुमान अंश में नीम करोली बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी बड़ी है, लेकिन एक्टर कहते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म की टीजर रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स कुछ 100 के आसपास थे और अब उनकी फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई है, लेकिन फेम के बावजूद उनका फोकस कुछ और है। वो कहते हैं कि हनुमान जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं। ज्यादा जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। और एक बात जो उन्होंने अपनी एक्टिंग चॉइसेस के बारे में कही वो भी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि वो स्क्रीन पर अब्यूज और अननेसेसरी वायलेंस से बचना चाहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी वो ऐसी लैंग्वेज या लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते। यानी रोल स्क्रीन पर बदल सकता है लेकिन वैल्यूज नहीं। तो दोस्तों, आज की फिल्मी गपशप में बॉलीवुड से मिला हमें थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ी एक्शन, थोड़ा मिस्ट्री और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का तड़का। करीना कह रही है कॉपी पेस्ट से बचना चाहिए। मिर्जापुर कह रहा है कि पावर गेम अभी जारी है। दृश्यम कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। और शोभिनाव सत्य कह रहे हैं फेम आए ना आए अपने वैल्यूज साथ रहने चाहिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए अब इसी बात पे सुनते हैं एक और गीत। हम सुनेंगे अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में फिल्म गब्बर इज बैक से तेरी मेरी कहानी। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद हम आएंगे ठीक 10:10 पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर हम वही सारे गीत प्ले करते हैं जो आपको पसंद आता है। यानी आप हमें आप चुन सकते हैं रेडियो ऑन डिमांड पर बजने वाले गीतों को। आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग्स, अपने डेडिकेशंस, और हम उन्हें प्ले करेंगे आपके लिए हमारे इस कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। तो नंबर है 9436887808। एक बार फिर से कह दूं, नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें तुरंत मैसेज कीजिए और हम आपके सॉन्ग्स को प्ले करेंगे हमारे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर।
तो चलिए अब बिना किसी देरी के सुनते हैं ये गीत, तेरी मेरी कहानी।

0: भारतीय ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसोरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के हमारे खास प्रस्तुति रेडियो ऑन डिमांड पर। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर हम वही सारे गीत प्ले करते हैं जो आपके दिल के हैं करीब। तो आप हमें तुरंत मैसेज कीजिए आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट, सॉन्ग डेडिकेशन, और हम उन्हें प्ले करेंगे हमारे इस कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। नंबर है 9436887808। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड का ये कार्यक्रम। सबसे पहला रिक्वेस्ट लेते हैं हम। ये रिक्वेस्ट अननोन है, हमें नाम नहीं बताया रिक्वेस्टर ने, जो श्रोता है लिसनर ने हमें नाम नहीं बताया, फिर भी चलिए उनका सॉन्ग सुनते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म फना का चांद सिफारिश। आशा करते हैं कि आप सुन रहे हैं और आप एंजॉय करेंगे। अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया है तो मैसेज कीजिए। नंबर है 9436887808।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: Radio on Demand. सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर. जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर. जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808. इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा.
2: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ और हम सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड. तो चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट. और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें आया है सानू प्रधान जी की तरफ से और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें ये गीत बैरन. आशा करते हैं सानू जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सेहतमंद हैं. चलिए सुनते हैं आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट. और साथ ही सभी श्रोताओं को मैं ये बता दूं कि आप हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अभी भी समय है. हमें लिख भेजिए अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट, अपने डेडिकेशंस, कोई सीक्रेट मैसेज. नंबर है 9436887808. तो चलिए सुनते हैं सानू जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट बैरन.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Pare Hydropower Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: श्रोताओं चलिए लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट और हमें ये सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमारे डेली लिसनर में से जो हमेशा हमें सुनते हैं हमेशा हमें लिखते हैं और आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट लेके हमें बहुत अच्छा भी लगता है हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं हितेंद्र दास जी लिखते हैं असम से और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म दोस्ती का ये गीत मेरी दोस्ती मेरा प्यार हितेंद्र जी आशा करते हैं कि आप सेहतमंद हैं खुश हैं और चलिए सुनते हैं साथ में आपका ये सॉन्ग रिक्वेस्ट मेरी दोस्ती मेरा प्यार

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।

हैं शिव गोप जी, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। इन और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म मिलन का एक बात बताओ एक गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने। तो चलिए सुनते हैं इनका सॉन्ग रिक्वेस्ट, एक बात बताओ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम, जहां हम वही सारे गीत प्ले करते हैं जो आप चुनते हैं। तो चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें आया है सुनीता बासुमतरी जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं असम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म जाने तमन्ना का पिया पिया ओ पिया, जिसे गाया है उदित नारायण ने। तो चलिए सुनते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट। सुनीता जी, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं।

श्रोताओं चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग हम सुनेंगे आरुषि प्रधान जी का और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें ये गीत मैं तेनु समझावा। आरुषि जी आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए साथ में एंजॉय करते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए अब आपको सुनाते हैं एक और गीत हमारे रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम में। और ये गीत रिक्वेस्ट आया है जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगतीपी और धर्मगिरी रोंगपी की रोंगपी जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं सरी हजन कार्बियांगलोंग आसाम से। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म धरती का ये मौसम भीगा भीगा है, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की जोड़ी ने। तो चलिए सुनते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर आज का आखिरी रिक्वेस्ट ले लेते हैं और हम ले रहे हैं ये रिक्वेस्ट प्रिया बोरो जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें बेवफाई का शुक्रिया। चलिए सुनते हैं ये गीत। आशा करते हैं प्रिया बोरो जी आप हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते रहिए।

तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम के अंत में और साथ ही हमारे आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के अंत में भी। आशा करते हैं कि आपको ये प्रसारण सभा अच्छा लगा और मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय एवं तकनीकी अभियंता गोलो कालो और मैं अपनी आवाज के साथ आपकी आरजे बिंदुंग दिंदुंग माज। श्रोताओं अब से कुछ देर बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। और साथ ही आपको एक अगले सफर में, सुरेले सफर में ले जाने के लिए हमारे स्टूडियो पर पहुंच चुके हैं हमारे अगले आरजे ननाश, तो बने रहिए हमारे साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कौर पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। और दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 11:11 और अब शुरू होगा मेरा और आपका सिलसिला, यानी मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास के साथ अगले कुछ घंटे आप बिताएंगे। और उम्मीद है पहले आवर कमाल का रहा होगा आप सभी का। आरजे दिंदो मंच ने आपके कान नहीं पकाए होंगे अपनी बातों से। और दोस्तों, बाहर धूप काफी तेज है पर अपना वाइब एकदम चिल और म्यूजिक नॉन स्टॉप चलने वाला है। तो बस जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो, कहीं मत जाना, जुड़े रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इससे पहले कि हम अपने इस सेकंड ट्रांसमिशन को स्टार्ट करें, मैं आप सभी को बता दूं आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा यह दूसरा प्रसारण सभा कार्यक्रम फिल्मी लहर के साथ।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

सो तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज़।

0: सुनो दोस्तों, आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर

0: नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets, and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India has focused on empowering women financially, socially, and through education, skills, and an improved quality of life, with the objective of making women drivers of the country's growth.
4: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman who didn't.
3: Defense Minister Rajnath Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defense Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defense partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations' growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific. Mr. Singh noted that the development follows highly productive discussions held with his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi in New Delhi last month. The defense minister said mutual exchanges of visits, such as Exercise Veer Guardian, further strengthens this synergy. The government has cleared 8

तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बॉम्बे वाइकिंग्स का क्या सूरत है, और अब आप सुनेंगे ऋत्वी का उड़ गए। तो बने रहिए और इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

और श्रोता दोस्तों, अफसोस के साथ इस बेहतरीन गीत को सुनते हुए समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और अब आइए सुनते हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। सुनो दोस्तों, अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना

0: काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
2: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। मुंबई।
2: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has held high-level bilateral meetings with his counterparts from Malaysia, Timor-Leste and Myanmar. The meeting was held on the sidelines of the 9th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry in New Delhi. During his meeting with Malaysia's Agriculture and Food Security Minister, Malaysia Mohammed bin Sabu, Mr. Chauhan noted the importance of sharing knowledge, expertise and best practices. Timor-Leste's Agriculture Minister, Mr. Marcos da Cruz, expressed interest in building strong institutional mechanisms between both sides to address various challenges in agriculture and ensuring food security for the nation. Meanwhile, Mr. Chauhan held a meeting with the Agriculture Minister of Myanmar, May Naung. During the meeting, the minister noted that the Memorandum of Understanding between the two countries is at an advanced stage of finalization for strengthening the cooperation in agriculture and allied sectors. Defense Minister Rajnath Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defense Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defense partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations.

0: हे कन्हैया किसको कहेगा सुमैया।
1: जी जरूर सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है
0: जी सर,
1: जी।
0: और ये गाना मेरे तीन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा सर।
1: जी जरूर,
0: सबसे पहले तो आप हैं,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: और सेकंड नंबर पर हमारा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है, उसके सभी लिस्नर सभी लाइन में कतार लगा के खड़े हैं कि
1: ओके
0: हम भी अभी एंट्री बजा दें अपनी।
1: अच्छा जी।
0: और तीसरे मेरे वो साथी गण जो इस समय भी ईटानगर को सुन रहे हैं,
1: ओके जी,
0: ये
1: और
0: तीनों मेरे दोस्त दिल के बहुत करीब रहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी अपना दोस्त बनाने के लिए। और दिलीप जी,
0: थैंक
1: कैसा मनाया आपने जन्माष्टमी?
0: सर, अच्छा ही मनता है हमारे उदयपुर शहर में तो। जगदीश मंदिर पर मटकी फोड़ का प्रोग्राम प्रतिवर्ष ही होता है,
1: अच्छा जी।
0: हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण होते हैं,
1: देश
0: और
1: विदेश से
0: हम
1: आते होंगे।
0: जी इसका लाइव टेलीकास्ट हमारे टेलीविजन पर आता है, उसी को देख के आनंद लेते हैं।
1: अच्छा, क्या बात है जी। और
0: दो
1: रेट
0: तीन दिन तक लगातार आता है वो भी प्रसारण उसका,
1: जी।
0: तो उसी को देख के आनंद लेते हैं। बाकी यहाँ पास में ही हमारे अस्थल मंदिर है,
1: अच्छा।
0: वहां जाके दर्शन वगैरह कर आते हैं श्रीनाथ जी भगवान जी के, वहां जाके वगैरह भी देख के आ जाते हैं सर।
1: अच्छा, तो पता चलता है कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जन्माष्टमी अपने पूरे परिवार के साथ।
0: जी बिल्कुल सर,
1: जी। तो दिलीप जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर जी, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से आपका नियमित शो था सर।
0: जी शिवा लोहट जी, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कैसे हैं सर आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: सर जी हम बहुत बढ़िया हैं और रिमझिम बारिश लगी हुई है और आपसे बातचीत का सिलसिला चल रहा है सर।
0: क्या बात है, बहुत ही सुहाने मौसम में आप और हमसे जुड़ रहे हैं, अच्छा लगा। जी। और जन्माष्टमी
1: कैसे रहे फेस्टिवल आपके सर?
0: जी हमारे यहाँ पे मनाया जाता है।
1: जी
0: हाँ, काफी लोग आते हैं और मंदिर में जाके दर्शन करते हैं।
1: जी सर आप देखिए ना सर, आप ये हो गया, आप गणेश उत्सव आ जाएगा, फिर नवरात्रि आ जाएंगी, अभी फेस्टिवल ही फेस्टिवल है
0: जी, फेस्टिवल का सीजन आने वाला है।
1: जी सर।
0: जी बिल्कुल। तो आज कहिए शिवा लोहट जी, कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: सर जी एक मूवी रहेगी मिस्टर बेचारा, उसमें एक कुमार सानू जी की आवाज में गाना है, कोई कोई आंखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र रहेंगे पूरन ब्रह्मा जी, शारदा प्रसाद जी, अविनाश जी, पुरुषोत्तम कुमार जी और अमल जी, विमल जी और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आपको डेडिकेट रहेगा सर ये गाना।
0: जी मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवा लोहट जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर
1: जी, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव
0: जी। मनोज नामदेव जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद सर जी।
0: जी और सुनाइए, आप कैसे हो? आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी बिल्कुल सर, मैं तो बढ़िया हूँ। अब मौसम की बात है सर, तो आज तो मौसम लगभग खुला हुआ है।
0: अच्छा।
1: और बहुत दिन से लगातार बारिश होती जा रही थी, आज खुला है लेकिन सर।
0: अच्छा
1: बिल्कुल सर।
0: ओके, तो बढ़िया मौसम है आज।
1: हाँ सर बिल्कुल।
0: ज्यादा धूप तो खिला नहीं?
1: नहीं सर, धूप ही निकली है सर।
0: अच्छा, धूप ही खिला हुआ है। ओके
1: हाँ,
0: ओके, तो बढ़िया मौसम में कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी जी सर, सुनवा दो। फिल्म का नाम रहेगा फूल और कांटे, और उसके सारे गीत बढ़िया है, कोई सी भी गीत सुनवा दो सर आप।
0: अच्छा, फूल और कांटे फिल्म का कोई सा भी गीत?
1: जी हाँ जी हाँ
0: जी हाँ, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आप के लिए
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: भैया मंकी नामदेव जी हैं, माइक नामदेव जी हैं, राहुल नामदेव, शिवम नामदेव, दासी ममता समस्त नामदेव परिवार हैं, और हमारे भैया लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, और जितनी भी ईटानगर कार्यक्रम प्रोग्राम सुन रहे हैं सब मिली गाना गेट।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और मनोज जी कहिए, कैसे मनाया आपने जन्माष्टमी?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मैं भूल ही गया। बिल्कुल सर, जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई है, और भगवान कृष्ण जी का जन्म था, तो सभी दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया सर।
0: अच्छा अच्छा जी जी, कौन सा मंदिर आपने दर्शन किया? मंदिर
1: सर जी, मेरे यहाँ भी कृष्ण भगवान का मंदिर है।
0: अच्छा।
1: और छोटा सा मंदिर है, लेकिन मैं सोच रहा था वृंदावन जाने की, लेकिन सर बारिश के खातिर में नहीं जा पाया सर।
0: ओके ओके ओके जी जी जी,
1: तो अपने गांव में ही जन्माष्टमी का वो पर्व मनाया सर।
0: अच्छा अच्छा, दोस्तों और परिवार के साथ?
1: हाँ सर
0: जी जी जी। तो मनोज जी, सुनते हैं आपके पसंद के गाने।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो,
0: हेलो
1: मेरा सबसे बात पता सुतपा बटरिया।
0: जी, नमस्कार सुतापा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप कैसे हो?
0: जी मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया। फोन पर तो मैं भी खुश हो गया।
0: जी हम भी बहुत ही खुश होते हैं जब आपका कॉल आता है। जी
1: मौसम
0: आपका वहाँ का मौसम कैसा है?
1: तो बहुत अच्छे है, बढ़िया है। अरे धूप उठा है
0: धूप उठाए। ओके
1: जी।
0: जी, तो इस बढ़िया मौसम में कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुना दीजिए तो कम दो धुन चार टेन से बोलो माया जी जय जयकार।
0: जी जरूर सुनाएंगे इस गीत को। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: पहले तो आपके लिए
0: जी धन्यवाद।
1: रमोजी चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, अविनाश तेलरी, लुकंदर वर्मा, श्रीकांत जोशी, अमर सिंह साहू, अनुपमा भट्टाचार्या, सपनाचार्या, सिंधु दास,
0: जी इन साथियों के साथ सुनना
1: पुरुषोत्तम
0: चाहती
1: कुमार,
0: हूँ।
1: सबके लिए।
0: ओके तो सुताबा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: दे दे मेरे दिल को करार।
1: हेलो फरमाइश।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैं कश्मीर सोनामर्ग से आपका नीमी श्रोता लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
1: जी लतीफ साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
2: बस बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे भी आज

0: अच्छा
1: दो महीने तो बर्फ गिरता है, उतना
0: अच्छा
1: नहीं जितना
0: वो
1: पहले गिरता था, 7 फुट 8 फुट,
0: अच्छा
1: अब कम ही बर्फ आता है।
0: अच्छा अच्छा जी, मौसम के बदलाव के कारण ये सब परिवर्तन आ रहा है जी
1: ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बर्फ कम हुआ
0: जी
1: है।
0: जी जी जी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है
1: हाँ सर,
0: जी। तो आशा करते हैं कि इस बार भी बहुत सारा टूरिस्ट आपके वहाँ पे आए और आपका कारोबार अच्छा फले फूले
1: हाँ सर,
0: जी।
1: आजकल यहाँ जो सितंबर का ये महीना चलता है ना सर, ये तो फसल की कटाई चलती है यहाँ पे, धान और मक्की की फसल।
0: अच्छा,
1: हाँ, और अखरोट है ना, वो भी खोड़ ये उतारते हैं।
0: हाँ जी, वहाँ के अखरोट हमारे यहाँ पे भी आते हैं जी, बहुत ही बढ़िया
1: हाँ
0: होता है जी जी जी
1: हाँ सही सर।
0: तो अच्छी जानकारी दी आपने लतीफ जी। कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप हम आपको सुनाएं।
1: हमें आज गाना सुनना है शब्बीर कुमार की आवाज में, आपकी पसंद पे कोई भी।
0: अच्छा, शब्बीर कुमार की आवाज़ में कोई भी गाना।
1: हाँ जी, आपकी पसंद पे।
0: अच्छा अच्छा जी, मैं अपने पसंद का गीत आपको ज़रूर सुनाऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको वो गाना ज़रूर पसंद
1: और
0: आए
1: कुछ साथी है हमारे साथ,
0: जी। जी जी हाँ जी, साथियों के नाम ले लीजिए।
1: रमेश प्रजापति, टेलर मास्टर, और भगवान सिंह परमा, लोकेंद्र वर्मा, और कई गजराज लोधी और राकेश कुमार।
0: ओके, इन साथियों के साथ सुनना चाहते हैं आप शब्बीर कुमार का गाया गीत।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: जी। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते
1: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर। ईटानगर
0: जी
1: आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ सर मैं।
0: जी सतीश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आपके कॉल आते हैं।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल सर जी। हर खुशी कभी दिल के करीब नहीं होती और रेडियो भी दिल से कभी दूर नहीं होती।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी, इसी तरह से हमसे दोस्ताना बना रहे रखिए। जी,
1: जी
0: और कहिए कैसे हो आप, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो बिल्कुल सर जी, अभी तो धूप खिली हुई है और मैंने दिल से कॉल लगाने की आज कोशिश की थी कि मेरे को मेरा गैप है तो आज लगा के देखूं, लग जाए तो ठीक है और न भी लगे तो भी ठीक है। मगर सर किस्मत जो होते हैं
0: जी
1: वो हमें तो सफलता की ओर चले जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका कॉल लग गया, आपसे बात हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे भी अच्छा लगा सर जी। और आपकी जो आवाज, मीठी मीठी आवाज, बिल्कुल सर प्रसारण हो जाता है तो और भी अच्छा लगता सर
0: क्या
1: बड़ा
0: बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश जी कहिए, कैसे मनाया आपने जन्माष्टमी?
1: सर जी। बहुत ही अच्छे मनाए सर जी, दोस्त लोग के साथ बढ़िया मटकी फोड़ प्रतियोगिता रचे हैं सर जी हमने और
0: अच्छा।
1: बढ़िया आग बांध करके सर जी मटकी फोड़े तो बहुत ही आनंद आता है। और जब हमारे दोस्त लोग इधर किधर बहक जाते हैं तो और भी आनंद

0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ, कहीं मंदिर में आपने मनाया या फिर अपने गली में, शहर में?
1: जी नहीं सर, हमारी गांव में गली मोहल्ले होते हैं तो उसमें
0: अच्छा
1: मनाते हैं सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, सभी परिवार के और दोस्तों के साथ।
1: जी जी बिल्कुल सर।
0: ओके ओके जी। तो सतीश जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: आज मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्मी का नाम है आंदोलन और गीत के बोल रहेंगे सर जी, कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे थे सर, गोविंदा की आवाज है सर।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे?
1: सर सबसे पहले तो आपको
0: धन्यवाद जी।
1: और हमारे सम्मानीय मित्र हैं सर जी, गौतम राय बोले जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं और लोकेंद्र वर्मा जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति, राजन गंगवार जी हैं, राजू यादव जी हैं और सर सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा सर
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सतीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी। थैंक यू सर।
0: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार, डिस्ट्रिक्ट एकाचार, आसाम से।
0: जी देवजीत दास, आपने बहुत दिनों के बाद कॉल किया।
1: मैं तो आसाम में व्यस्त हूँ, इसीलिए तो आज मैं काफी दिनों के बाद आज
0: अच्छा
1: बातचीत हुआ।
0: जी जी,
1: अच्छा लग रहा है मुझे।
0: जी मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद आपने हमें याद किया। और किस काम में बिजी थे देवजीत दास?
1: मैं तो अभी तो पेपर प्लेट होता ना, मशीन में काम करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी,
1: पेपर बनाती हूँ, काम ये सब होता है।
0: अच्छा,
1: चाय की काम जो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चाय का ग्लास जो होता है पेपर वाला था। ओके, और आज क्या छुट्टी? आज छुट्टी है।
1: आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आशिकी।
0: ओके,
1: और गाने का बोल है तू मेरी जिंदगी है,
0: तू मेरी जिंदगी है,
1: हर खुशी है, ये गाना भी।
0: ओके, हाँ जी जरूर सुनाएंगे।
1: और ये गाना भी गया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने।
0: जी जी, हाँ जी।
1: और ये गाना कुछ मैं परिवार में डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ जी जरूर।
1: पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और माताजी शिल्पारानी दास, बड़े भैया जोजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी।
0: okay.
1: और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ,
1: पहले मेरा बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य, और है दीदी है छोटवा भट्टाचार्य, रामतो भाई, प्रेमजी दादा, बप्पन दादा, और है मेरा जौहर दादा, और बेंगलुरु से है मेरा दादा है मिशन चक्रवर्ती, और पश्चिम बंगाल से है मेरा दादा है गणेश दास।
0: अच्छा।
1: और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते हैं 750 के लिए गाना डेडिकेट करूंगा।
0: ओके, तो देवजीत दा कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आशिकी फिल्म पर गाना सुना रहे हैं।
1: नमस्कार, आपके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आज ये उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है, यहाँ पर आज मतलब शाही सवारी निकाली जाएगी महाकाल जी की।
0: अच्छा जी।
1: जी सर जी, ये जैसे कि सावन महीना जब खत्म होता है ना, तो सावन महीने में 4 सवारी निकली थी उज्जैन भ्रमण पे महाकालेश्वर जी की। और ये सावन के बाद में जो भादव महीना आता है, उसमें 2 सवारी इसमें निकलती है। तो एक सवारी तो पहले सोमवार को निकल चुकी है।
0: अच्छा।
1: अब ये भादव महीने की लास्ट सवारी है, इसको शाही सवारी कहते हैं सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी जी।
1: और सर शाही सवारी में मतलब पुलिस प्रशासन अपना मतलब जो बैंड रहता है पुलिस प्रशासन का, वो बैंड भी रहता है साथ में।
0: अच्छा जी।
1: घोड़ा पालकी और सभी मतलब सभी अपने गणवेश में रहते हैं। और बाबा महाकालेश्वर जी की जो सवारी निकलती है वो पूरे शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। ये सवारी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है?
1: सर ये महाकालेश्वर मंदिर से चालू होगी, और महाकालेश्वर मंदिर से चालू होने के बाद में शिप्रा घाट पर जाएगी। शिप्रा घाट पर शाम के समय में संध्या आरती होगी।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद में मतलब जो उसके प्रमुख जो रूट बना हुआ है, उस रूट के माध्यम से सारे जो शहर में है वहाँ निकलती है।
0: अच्छा।
1: और रात को 10 बजे ये फिर रात को महाकाल प्रांगण मंदिर में वापस जाती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी।
1: और महाकाल राजा मतलब पालकी में सवार होकर सभी जो उज्जैन के नागरिक है, बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, सभी को अपना दर्शन देते हैं। और महाकाल भगवान मतलब प्रजा का हाल चाल जानने के लिए उज्जैन शहर में भ्रमण के लिए निकलते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी जी।
1: तो और इसका सर महत्व बहुत है, और बहुत से तीर्थयात्री उज्जैन, करीब 10 लाख पब्लिक आने की संभावना है आज।
0: अच्छा, क्या बात है, जी जी जी। और इस शाही सवारी में कोई भी भाग ले सकता है?
1: हाँ,
0: शुरू से अंत तक
1: सभी श्रद्धालु आते हैं, बाहर से सभी भाग ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और उज्जैन के जो प्रमुख बैंड रहते हैं, जो संगीत कलाकार लेते हैं, वो अपने कला का प्रदर्शन भी करते हैं उसके अंदर।
0: अच्छा।
1: और बैंड भी निकलता है साथ में।
0: ओके, गीत संगीत का कार्यक्रम भी होता है वहाँ पे?
1: जी सर जी।
0: अच्छा अच्छा, ओके। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने लोकेंद्र जी। तो इस जानकारी के साथ साथ अब बताइए, कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: गाना तो सर ये पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें गाना है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ऐसा गीत है सर।
0: जी जी जी जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: शारदा प्रसाद जी है, दिलीप पाहुजा जी है, नरेश प्रजापति जी है हमारे, और एक रमेश प्रजापति जी है हमारे। एक दुकान पर हमारे कस्टमर है मनोज आनंद जी है।
0: अच्छा।
1: और हमारे जो सैलून पर काम करने वाले हैं रवि सोलंकी, और हमारे धीरज भाई हैं, सभी बैठे हैं, ये भी प्रोग्राम सुनते हैं जब आपका प्रसारण होता है सर।
0: अच्छा, क्या बात है। जी तो लोकेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: तो सोता दोस्तों, ये था कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा आपका और मेरा मन पसंदीदा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
9: बन गया बजट?
8: हाँ,
9: 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
9: ना,
8: पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और
8: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़िया, जाओ भाई।
6: RBI कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
9: बन गया बजट?
8: हाँ,
9: 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
9: ना,
8: पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और
8: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़िया।

0: जाओ भाई।
1: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: दी, ये देख कैसे।
0: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
0: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
8: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
7: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
8: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
7: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जाँच कराए, भेदभाव मिटाए।
8: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
9: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में
10: सुनो दोस्तों, अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पे।
11: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi today met eminent philanthropist Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said he fondly recalled the late Agha Khan IV and his enduring contributions to development efforts. The Prime Minister said they discussed ways to further strengthen India's partnership with the Agha Khan Development Network in healthcare, agriculture, rural development, youth and women's empowerment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also met eminent philanthropist and 50th Imam of the Ismaili community, Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed the impactful work in social development and heritage preservation by the Agha Khan Development Network and further opportunities in India and abroad. Director General of the World Health Organization, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, met Union Health Minister Jagat Prakash Nadda on the sidelines of the 79th session of the WHO Regional Committee for Southeast Asia and Delhi, Timor-Leste. Dr. Tedros congratulated Mr. Nadda on

0: 3 to 4 days. The flood situation in Bihar improved slightly as water levels receded in several rivers. Relief and rescue operations have been intensified, a report.
1: Flood situation has improved slightly in the state as water levels in the Ganga, Son, Punpun, Gandak and Bagmati rivers have receded. Relief and rescue work has been stepped up. More than 4 million people in 14 districts, including Patna, Vaishali, Saran, Munger, Bhagalpur and Arwal, are affected by floods. Relief camps are providing food, medical camp and essential supplies. Hundreds of houses have been damaged, while nearly 700 rural roads remain underwater, affecting road connectivity. Road Construction Minister Engineer Kumar Shailendra has asked officials to keep a close watch on the roads and repair them as soon as the water recedes. The Education Department is also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concern in Baltara, in Khagadia and Kursela in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhi Shri for Akashwani News, Patna.
0: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण विकास युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा कृषि ग्रामीण विकास युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की

0: बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया Empowered Finance, Building Trusted Digital Infrastructure for the AI Economy विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महा

0: विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलू संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंधकम से मरगथम कुमार विल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंधकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखें अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया

0: के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम्स से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिद्धार्थ, सुप्रिया एशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अब आइए शुरू करते हैं द कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

नमस्कार दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। और आज दोस्तों हम समय में, वक्त में पीछे चलने वाले हैं, तो गाइस सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम सीधा 90s की उस गोल्डन दुनिया में लैंड करने वाले हैं जहां रोमांस भी प्योर था और बीच का तो क्या ही कहना। चाहे वो कैसेट्स वाली यादें हो या वॉकमैन का क्रेज, अगले कुछ पल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके चाइल्डहुड और टीनेज के सबसे आइकॉनिक हिट्स के नाम। तो बस वॉल्यूम बढ़ाओ और पुराने दिन याद करो, क्योंकि पहला गाना हम आपको सुनाएंगे फिल्म मन का, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और गाइस दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, तो लीजिए पैसे ये बेहतरीन गाना मन, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलिए दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे हमारे इस संगीत में सफर पर, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to rupees 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today.
0: वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं और बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक बार फिर से हमारा संगीत में सफर।

एक बेहतरीन गीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस गीत ये गीत है तुम दिल की धड़कन में, फ्रॉम द फिल्म धड़कन, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: इसे देखो दिल की धुनी रमाता।
1: और श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अब श्रोता दोस्तों अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके तुरंत बाद मिस मी कमान श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद ताई कामती श्रोताओं का समाचार। लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में एक बार फिर से, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
2: This is Hage Ani. Today's headlines are: Prime Minister Narendra Modi meets Prince Rahim Aga Khan 5 in New Delhi. Both leaders discussed ways to further strengthen India's partnership with the Aga Khan Development Network in

0: ชมนังอคิงนามนาลีนสตูดิโอไม่ชีกันมาว่าพาป่วยเนี่ยจะหั่งมันเนี่ยคำไตคำตีเฮาถือเคยไม่สุดโยหอ
1: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ताइकांती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप बने हुए हैं हमारे साथ इस स्पेशल सेगमेंट में जिसका नाम है, यानी जिसे कहते हैं बॉलीवुड अपडेट्स।

चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर तापमान बिल्कुल हाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीकेंड के सबसे बड़े धमाके की। भाई मिर्जापुर द मूवी ने बड़े पर्दे पर आते ही आग लगा दी है। कालीन भैया, गुड्डू पंडित और कंपाउंडर का वो पुराना कानून से परे अंदाज जब बिग स्क्रीन पर उतरा तो जनता जनार्दन पागल हो गई। ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच ग्रॉस कलेक्शन करके 2026 के सबसे पावरफुल ओपनिंग्स में से अपनी जगह बना ली है। मतलब ओटीटी का किंग अब बॉक्स ऑफिस का अनडिस्प्यूटेड बाप बन गया है।

दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि एक्साइटमेंट यही खत्म होती है तो अगली खबर सुनकर आपके चक्के छूटने वाले हैं। दोस्तों इस फ्राइडे यानी 11 सितंबर को सिनेमा घरों में आ रही है एक ऐसी जोड़ी जिसका हम 17 साल से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ।

और दोस्तों चलते चलते एक क्विक टिप उन सभी के लिए जो थ्रिलर के दीवाने हैं, नेटफ्लिक्स पर देवाशीष मखीजा की नई थ्रिलर फिल्म गांधारी ड्रॉप हो चुकी है, जिसमें बानी नाम की एक माँ की कहानी है जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। तो गाइस देखना ना भूलिए। और गाइस इसी के साथ चलिए, जैसा कि हम इस सेगमेंट में आपको सुनाते हैं आखिर में एक बेहतरीन गाना, आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खूबसूरत नगमा फ्रॉम द फिल्म लगान। आइए सुनते हैं और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, और बने रहिए हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।

इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि सेप्टेम्बर लेन मनी बन तारीख बृहस्पतिवार ई पोहांसों आजम बाजी पुनी मिनट मुद पिशम के वांचो साइका पांग कपई पोंग कहवा पाई फाले वांग का वांग्स डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ए जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स होटम फाइटर एयरक्राफ्ट डिंग पिक इंडिया तो अपोंग सऊ अंग वांग क्या इंडिया या जापान देश नि ए डिफेंस मोटोसजु मताता फये होशम अंग मोकसा तैक्या होमोकोसत जोंग मता खत खक्या होली अंग जौ सतैपु बोमहाजा ए देश नि ए इंडो पेसिफिक यांग मा तुमैलम खौ तुमैलम अखौ हा ओले तुंगति तैक्या जु मताता तो मोंगोंकन ओंग तै तैक्या ngai le jau ahol phapu le van le defense minister singh e ya ka ta social media post ka homa ngai van le bo ma chi e japan ya india ni ba ma haja motho hale le an kya let a new delhi to apung ang wang kya japan des defense minister shinjiro koizumi phai chi e khat le yo ngun zo zang wan kya phai ma pau kya chang tai pu le chu van le नेपाल देश मतबी जो खनंग मिसा जिए सांपू ए ले माल जो हाई क्या टीचन मोलम सिंह अन तोई ताई तो चोपोंग अंग इंडिया ए ले अन क्या अगस्त लेट निसा आजोक तारिक तो खंगे जो हो वंग वंग अन क्या मोथो सजु मा नेपाल देश अंग हो ताचा बन टोन्स हो नई जो रिलीफ तुए ना फो बो मा हजा टीचन मा मा असाम हु अन क्या खनंग मिसा फो तो लमले आंगाई अतक अंग क्या हिया फोरेंसिक ऑपरेशन हनपक मा अंग मिहक पुनी बन आली एक्सपर्ट थमले आकात अना बोमा हजाजी मा सबन आगा टोन्स रिलीफ या रेस्क्यू तोयना का लताम का क्या होथम आचतंगपा इंडियन एयरफोर्स थम अंकेता डिंग पिक एचु मनी काठमांडू होनोय कपना कहोमा अजंग बाजा का नेपाल देश तो क्या इंडियन एम्बेसी थम ए मनी गाय बनले Government of Arunachal Pradesh Ankya Department of Civil Aviation Hotham A Indian Air Force IAF Tham Pai Vanese Ankya A Mani Si Yomi District Michuka Honui Ma Mihok Ani Kanaka Ma Le Yo Thamzan Kapkya Ding Pik Makhang A Assam Dibrugar Mohan Bari Honui To Katlako Le Azanle Bo Mahaja Emergency Motto Michuka Honui Circle Officer Srimati Ritu Tawe A वनजे एन क्या ए मोकसाले हजा बामा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन होथम ए हजा मोथो हले मोकसाले थो लन क्या हनपक मा अंग होनै खतले चु आईएएफ थम तो ले हजा मोत सत मा हाकवन जिक फट क्या ऑफिसर्स थम तो होम मोंग मई हुते क्या का चु ngai ban le अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पीटी सोना मनी Rural Work Department officials tham phai apong asau ankya em pena hia tato honui niba lamjing project morsa thopong manpau pak tiketole haja bama sona eta social media ka ho ma haja region jang hanpak ma haja lam ta khat kha kya sholam ang yo satai pu haja zaile haja lamjing morsa chona khai le vai lanja mai angkya laban kya bo ma nok vai concern ho tham pho ang haja lamjing mot sat ho van amayang bo ma haja mot tho that kya tu van ti ma lan pu ku ma azong mong hai o le van se le

0: ตัวนายเซเว่นมาติดต่อจากใครเอเยก้าปังลูซานปังมันเดย์ DHS น่าฮัลกันตัวเก๋อรณาจลประเทศ State AIDS Control Society จิมขังเออไฮเล่ข้าท่าข้ากะจูอีไว
1: सोलो दोस्तों आप सुन रहे थे वन चो सोथाव का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे और अब चलिए करते हैं संगीत में सफर एक बार फिर से शुरू और सुनते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गाने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे ईद उमिस में श्रोताओं का समाचार लेकिन हमारा संगीत में सफर बनता रहेगा तो बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे।

0: वांग श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईद उमिस में कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ईटानगर सेलापुची जिहुनु बुरुलिनी एतानीचे ईद उमिस में आहोला के जी दरगा लम्बो जापान मे आदिने आंदोनवाया फाइटर एयरक्राफ्ट में इंडिया मा गिबामा ने इंडिया ने जापान में आती बुता जरगा जी चाहे अमुआ बसदा ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह में लगाने आतिकानी में जरगा जी माने इंडो पेसिफिक आतिका मा खो नवा आखावेमा आवया सदा लगादा अहोगा जापानीज डिफेंस मिनिस्टर सिंजिरो कोइजोमी में अहम बयागा मा दिलीमा गिबाने आतिबिता जरगा उजी पोआ चिजाबा एदोने बीर गार्जियन उजी एक्सरसाइज आखागा जी माने आतिकानी में पया जरगा जिगा सदा ने डिफेंस मिनिस्टर में लागादा अहोगा माचिमब्रुग में अमेमु आतियामुतांदो एहायाबा नेपालमा इंडिया में एचाहलीबा मावासुटन एचामा आंजी हाथुम हा आइदोने आरा तावन जोता असला मंगरहु कापी एचामा इमु आयगला दाने नेपालमा खाजिगा इंडियन एम्बेसी माचि मे लाहोगा ने इंडियन एयरफोर्स माचि इयु एयरक्राफ्ट मे एचाहलिबा हासोहो मंगाटन आंजी काठमांडूमा गितेहागा बदा लाहोगा शिगाबा इथु अथुसु नगा नावगे बने इंडिया में डीएनए किट आंजी अबु हागला दा ला होगा अरुणाचल प्रदेश मा जे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट इंडियन एयरफोर्स मिचुका दोने आलो अतिकोची एडमिनिस्ट्रेशन मिचुका एमओआ जा दोने मोहनबारी मा जे एआरसी आजा मैम आरगा गने सीयोमी डिस्ट्रिक्ट मिचुका अतिका शिगेवे खागा मिंग कानी आसाम डिब्रुगढ़ मा गीतिका बदा में सिविल एविएशन सेक्रेटरी आजा ममता रिबा में लगाता आहोगा मिंगी गीदो ने हेलीकॉप्टर आशुवेमा मिचुका सियो रितु ताओ आलो एडीसी माबी टाइपुडिया जिनी डियामो डॉक्टर लिनिया लोलेंदो ने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर कार्केन रिना में तांदो आरोगा बदा ने सेक्रेटरी आजा में लाके ओगादा आहोगा अरुणाचल प्रदेश आर डब्ल्यू डी मिनिस्टर पी डी सोना में पुनी पेमा तातो आए आजिगा चिपुआ आर डिपार्टमेंट मचे आजालम्बो को चिचगा ने आए छे काजी आजिगा ताहिर बता आहोगा आतिकाची इमु में आए छे शो अरुंधगा चा अतुगे ने आए छे आजिगे मचे अरुंधा इमोंदो के बने आरुगा पोंगे ने मुझिकी जोची ना ने मिनिस्टर ने लाके वा बता आहोगा एसआर को कोमाने बोर्ड आजपो प्राबा आज तेजी ना ने दिबांगबी डिस्ट्रिक्ट के बने एसआर माने बोर्ड आजपो आज पतिगा मा हथोल मेगा वाईबीबीजे राजेश्वर में बुनी अनि निमाचे मीटिंग के मा चिचाय बमा हो लाय बने बियालो ने बीएलए अलंबो में एसआर को कोमाने काजुए लातिया आचुचामा उंजिखे जोजी ना लाय बदा आहोगा आ मीटिंग मा जेपीसी साधुमी हु देसी यशवंत मीणा एडीसी जालेउम्पो डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट दीपेन मोलो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्दो मिहोदने एकिशा इमु उखो गिगा बदा ला होगा नामसांग आतिकोची आईसीडीएस में अरुणाचल एसआरएलएम हेल्थ डिपार्टमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को आरगा गन्ने पुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट सोहा आतिकोने बुखनी लिनाबा राष्ट्रीय पोषण मा कैंपेन आखापगाम बदा आहोगा महो

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

और सोता दोस्तों, इसी के साथ हमारे स्टूडियो के घड़ी में बज चुके हैं 4:17, यानी अब मेरे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबके चहेते आरजे आरजे नीलम थापा, जो बनी रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। एंड आई होप कि आप सबको आज का ये ट्रांसमिशन मेरे साथ बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। लेकिन मैं जाने से पहले आप सभी को बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी थंगजांग तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। तो अब इसी के साथ मुझे यानी आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

मेरो आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढमचुसा डुबा रामबलै पांग हजनेरा क्रोक्रो पांग सप्तेम्बर जिलिंग रंगसई तारीख आरो मचुरंगजा रुंगरांगरो कोहंग कोनकामामाइर नांगमुंग नांग आफंग लग जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट जहाज थोग्रौरे इंडिया ने जापान मुंग नई तुंग रहोम कौनांग अरियंग कामजुंग समुद्र मोरौ नांगमुंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रफान्त आरो जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट जहाज पर थोग्रौ इंडिया ने जापान मुंग र इंडो पेसिफिक नंग हांति नुंगमनै अचिंग नुंगम तानरप रखवाइरु मोरौ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह र सोशल मीडिया पोस्ट नंग फान्त कचाइ लिंग छ न्यू दिल्ली नंग जापान मुंगवांग डिफेंस मिनिस्टर सिंजीरो कोइजुमी यम नरी रफानचेन रौरे खाम जापान मुंगवांग फाइटर एयरक्राफ्ट जहाज प वांगतुमो डिफेंस मिनिस्टर रफान्त नेपाल मुंग नंग खम पंग रौ लेम तहै इंडिया र फागसा फान तांगवांग प रशिया सिरा कसुमसै टोन्स कुरौ नै परजु सार्स ने रेस्क्यू र फोरेंसिक ऑपरेशन ताम होहाय कुमंग रौ वा बायो बलै खग एक्सपर्ट महेंग कुरौ रे रेलिग्लाम र महेंग म होहाय कोट प सेहेंग रौ मोरौ नेपाल मुंग नंग इंडियन एम्बेसी र मनैसा फान्त इंडिया र आगस्ट जलिंग रंखा क्रोक तारीख सा नंग होहाय कोट प तफंग त थलिंग मचेर खग इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जहाज र रिलीफ नै रेस्क्यू तावांग प सुमसेर बंगा टोन्स हुरौ कनमंडु नंग थोक त मोरौ त बर्म इंडिया र स्पेशलाइज टेक्निकल गियर तंग प नेपाल मुंग म तथोक त परतुंग नंग मत रेस्क्यू सुट तंग नै गैस डिटेक्टर्स तंगरा ब्रीथिंग एपरेटस तांगवांग नांगम अरौ इन्फ्लेटेबल वर्कवेज नै पोर्टेबल जेनेरेटर मेसिनरा लाइटिंग टावर्स पर म डी वाटरिंग पम्प मेसिन तांगवांग ताम तथोक तु मोरौ त इंडिया र डीएनए किट्स तंग नै रिएजेंट्स तांगवांग रा पर म बलांग बलिबाय तांगवांग तांगदोप कुतु मोरौ एम्बेसी र फान्त अरुणाचल प्रदेश सरकारी बंग सिविल एविएशन डिपार्टमेंट नई इंडियन एयरफोर्स वन कचुरौ रे सी योमे डिस्ट्रिक्ट नंग मेचुका हावंग राघन मई वानई प तरणिसा हिद्रौ डिब्रुगढ़ नंग मोहनबारी हा नंग तथोक तुमोरौ त मेचुका हावंग सर्कल ऑफिसर श्रीमती रेतु तावे र मई वानई राखान प खैरौ रे रोखेब खाम अराग मई वानई प मोहनबारी नंग तथोक तु मोफान त अरो इर आर्जन ऑपरेशन तयांग त नंग ऑफिसर हेंग नई सेपे हेंगरा एजेंसीज महेंग प नरी सचरांग खाम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट रन त त परम राखान मई वानई प होमोइनंग तथोक खाम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट र इंडियन एयरफोर्स पर म स्पेशल थैंक्स कुत नंग रनपत अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना प मनैसा रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट वांग ऑफिसर्स मैं जम रहम परजु पेना तातो रोड प्रोजेक्ट कम कयांग र कमुंग नंग रफान्त पेना तातो हा तुंग नंग रथान म इर गरी लम प अरेंग पिंथुम जंग र लम प होमय नंग तचेरंग रा रुंगो रौ पी डी सोना र सोशल मीडिया पोस्ट नंग फान्त आरो गरी लम

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: नमस्कार, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोता मित्रों, आप सभी का इस तीसरे प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस तीसरे प्रसारण सभा में मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्रों, इससे पहले दूसरे प्रसारण सभा का आप आनंद ले रहे थे आरजे दागमे नानास के साथ। आरजे दागमे नानास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो की आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए। आज है गुरुवार 10 सितंबर, समय शाम के 4:32 हो रहे हैं। तो चलिए बिना समय बिताए इस प्रसारण सभा का आरंभ करते हैं दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
1: गुड इवनिंग ईटानगर,

जी हाँ श्रोता मित्र, आज 10 सितंबर है और आज के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसकी क्या वजह है और क्यों ये मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के आज के अंक के तहत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन, आर्थिक परेशानी, रिश्तों में तनाव और कई दूसरी परिस्थितियां लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं कर पाता और खुद को अकेला महसूस करने

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, इसका उद्देश्य आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस दिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि मानसिक परेशानी भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है और इसके लिए मदद लेना सामान्य बात है। श्रोता मित्रों, इसके इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पहली बार 10 सितंबर 2003 को मनाया गया था। इसे मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ ने की थी। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इस पहल को समर्थन दिया। किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव, लगातार उदास रहना, लोगों से दूरी बनाना या निराशा की बातें करना दिखाई दे तो उसे गंभीरता से लेना जरूरी है। ऐसे समय में उसकी बात सुनना, उसे अकेला महसूस न होने देना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद तक पहुंचाना महत्वपूर्ण हो सकता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का संदेश यही है कि किसी व्यक्ति की परेशानी को छोटा समझने या उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे समझने और सहारा देने की जरूरत है।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में इम्तिहान फिल्म का ये खूबसूरत गीत। जी हाँ, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। श्रोता मित्र, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत करना जरूरी है। किसी व्यक्ति की परेशानी सुनना, उसे समझना और सही समय पर मदद उपलब्ध कराना आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो श्रोता मित्र, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं सोतन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे बेहद ही प्रेरणादायक गीत लता मंगेशकर की आवाज में सौतन फिल्म से। आपको बताते कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है, जिसके तहत आज हमने बात की विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में। आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार।

0: कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय वायुसेना के समन्वय से शिहोमी जिले के मेचुका से गंभीर रूप से घायल दो मरीजों को सफलतापूर्वक हवाई मार्ग से डिब्रूगढ़ के मोहनबारी पहुंचाया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शिहोमी जिले के पेना तातो सड़क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। दिवांग वैली जिला निर्वाचन रोल ऑब्जर्वर ने आने में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की। हमारे आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी टीम के तहत आईसीडीएस परियोजना नामसांग के तहत 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। सीआरपीएफ की 138वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम सीएपी 2026-27 के तहत ईटानगर स्थित चिंपू में बुनियादी सिलाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही किनो याकाप ने लद्दाख में 7,077 मीटर ऊंची माउंट कून चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्लामी मुस्लिम समुदाय के 5वें ईमान और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान के विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी की और मजबूत करने को तरीकों पर भी चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफॉर्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय वायुसेना के समन्वय से शिहोमी जिले के मेचुका से गंभीर रूप से घायल दो मरीजों को सफलतापूर्वक हवाई मार्ग से डिब्रूगढ़ असम के मोहनबारी पहुंचाया गया है। दोनों मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मेचुका के सर्किल ऑफिसर रितु तावे द्वारा रखी गई मांग के आधार पर यह आपातकालीन निकासी अभियान शुरू किया गया। नागरिक उड्डयन विभाग ने इस अभियान में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मियों और संबंधित एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। विभाग ने मरीजों को सुरक्षित और समय पर निकालने में त्वरित प्रतिक्रिया और महत्वपूर्ण सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना के प्रति विशेषकर आभार व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शिहोमी जिले के पेना तातो सड़क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यह सड़क क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग और इसका समय पर पूरा होना प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाए रखने, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा का पालन करने का आग्रह किया, ताकि बेहतर संपर्क सुविधा का लाभ लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दिवांग वैली जिला निर्वाचन रोल ऑब्जर्वर VIIVJ राजशेखर ने अनिनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता पर जोर देते हुए बीएलओ एवं बीएलए से दावों और

0: मृत्यु की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया ताकि सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। हमारे आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम के तहत ICDS परियोजना नामसांग के तहत 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ सोहा में किया गया। ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज संस्थाओं और शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर यह संदेश दिया गया कि बच्चों और माताओं के विकास वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उचित पोषण आहार में विविधता और स्वस्थ खान पान की आदतें बेहद आवश्यक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 138वीं बटालियन ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम CAP 2026-27 के तहत ईटानगर स्थित चिंपू के बुनियादी सिलाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 8 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य बटालियन के कार्यक्षेत्र में रहने वाले स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों में कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के बीच पेडेस्टल स्टैंड और स्टूल सहित 4 सिलाई मशीनें भी वितरित की गई। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही किनो याकप ने लद्दाख में 7,077 मीटर ऊंची माउंट कून चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। माउंट कून जांस्कर पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियों में से एक है और ये अपनी तकनीकी चुनौतियों तथा कठिन मौसम परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। इस उपलब्धि पर किनो याकप को बधाई देते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और साहस लगातार लोगों को प्रेरित करता रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेट्से में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: नेपाल में अचानक आए बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,377 हुई है। 5,000 से अधिक लोग अभी भी लापता है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई जहां 346 लोगों की जान चली गई। प्रभावित क्षेत्रों में 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है जिसके तहत 130 टन राहत सामग्री भेजी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद व्यापारी आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमेरिकी डॉलर और 30 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलन में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक AI एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे और UIDAI के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक AI टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित

आकाशवाणी ईटानगर चतुर्थे सखुना हजकिनी यौकिनी सरोयंग अमन्ने जेम्बंगरोक बंगाचु ये जेंतु मुन्या इंडिया से जापान से न कछु कमे मतोंकु जखु याचु इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से जापान नवा डिफेंस मिनिस्टर सिंजिरो कोयजुमिया दिल्ली ने तेथुंतोंगा जापानी कहोंयांग यंगपुक या इंडिया ने न्याप जेंशे सपुक लागतु कु गंगचुन ने करेबे ले या करे जकचुन ने जापान यंगपुक या इंडिया ने मिजा तपुक लागतु जापानी यंगपुक कसकिंग खांगतु या कु राजनाथ सिंह जापान डिफेंस मिनिस्टर सिंजिरो कोई जुमी ने होंडक ते शोरा तपुक नेपाल ने देखु योकनी सरोक नाप अक्टूबर ने नोबो कवंग या कचुमा बलिया अमन ने तो इंडिया ही नेपाल को वंशे चंसे हैं उसका या कसौन करो नेपाल नव इंडियन एम्बेसी नव रेकचे बमिजा न्याम वंग रोमजोंग बंगा तोंसिया मा हैं उसका न्याम कसम क्रिंडन को नेपाल ने लसौन करा सियोमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेचुका नव होंडा कन्या कोन्यक पकिनिया मिशनम इंडियन एयरफोर्स यंगपुमा डिब्रुगढ़ ने लसपोंचे होंतका यकरेट या मेचुकान व सर्कल ऑफिसर रितु तावे चतस्चे संबोर यकरोरंग या बचेला इंडियन एयरफोर्स को सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट शी कपंगमा होंडा मा तेशोराते को सियोमी डिस्ट्रिक्ट याचु बेने से तातो से याचु आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कपंग मा अमन ने लम्छो जारो मिजा यके दक एमएलए से आरडब्ल्यूडी एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोनाई डिपार्टमेंट ऑफिसर डॉन या पप्याला कुटिंग कटिंग से सिमा सामा हायंग काम को कगम लम्छो चाम बोरो ले रो अकरोप याचु हायोप ने न्याम ने वुक्तु तेमिन विवेन है कु स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर न्याप्स को किंकांग हनरो दिवंगवेली डिस्ट्रिक्ट ने तो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर वे वीवीजे राजशेखरी मोंग सेचुन ला बीएलओ से बीएलए डॉन ने कछु मलब छोटा मोरो सी हिन लेरा यक मोंग चुन याचु यक डाकनवा जेपीसी साधु मिहु डिप्टी कमिश्नर यशवन मीना एडीसी जाली उम्पो डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट दीपेन मोलो से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हुंदू मेहुन्याप तो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट सी कपंग मा नुसा नोंसु कु पक्सा जोजो कोटमेन पंगना हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी मा प्रोग्राम मिन बहेल्या मिश्नप ट्रिप डिस्ट्रिक्ट ना सोहा हा याचु आईसीडीएस डिपार्टमेंट यमा एआर एसआरएल हेल्थ डिपार्टमेंट पंचायती राज से एजुकेशन डिपार्टमेंट शी बगोंगला एसुमा प्रोग्राम ती होना तेलोर मिसिम कासको से तो पी पंगने सीआरपीएफ शी बगोंगला ईटानगर रिने चिंपू हायाचु हडांग खुन्याकु अकेदा सितंबर मंगशे मा सेखेत नप टू ट्रेनिंग प्रोग्राम बहोंला लेचगरा यकनप याचु ट्रेनिंग होंते खुन्याकु बिली खुन्याकु टेलोर मिसिन्या मंखम तकसंकवा अरुणाचल खोन्याक किमिन किनो याकब या लडक ने माउंट कुरेन या चुलोंग तकाल्या अरुणाचल मिन्याप याबाब लसेलेरा यकरोरंग या बचेल्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेनी किनो याकब ने होंडमते शोरा तुकुआ अकरोप या चु दुबई हने मुन्यूडन या एशियन कप को 2020 क्रिकेट लौटा डॉनरो

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, और इस सफर में आपके साथ हैं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:08 हो रहे हैं और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता मित्र, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से गीत, जिसे आवाज दी है बेनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा ने।

0: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का। श्रोता मित्रों, जी हाँ, आज भी हम आपके लिए, जी हाँ, आज हम आपके लिए डर से संबंधित कुछ बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो डर एक स्वाभाविक भावना है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। वैसे ही डर और भय जब तक हमारे नियंत्रण में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये हमारे नियंत्रण से बाहर होकर हमारे रोजमर्रा के काम में, हमारे लक्ष्यों एवं सपनों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करने लगती है, तब ये एक विकार या रोग का रूप ले लेते हैं। ये रोग हमारे मन के नकारात्मक सोच का परिणाम है। चिंता, तनाव, उलझन हमारे अनुशासनहीन कल्पनाओं के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि हमारी इस मानसिक बीमारी के डॉक्टर भी हम स्वयं हैं। जी हाँ, हमारी इस बीमारी का इलाज हमारे अलावा कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता। दोस्तों, सच मानिए, जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में है, जिन लोगों ने चिंता को जीत लिया है, जो लोग बिना भय के कहीं भी आते जाते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, तो मित्रों, हम आप में ऐसी क्या कमी है जो और लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, डर पर हमें स्वयं ही काबू पाना होगा। और हाँ, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग ही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: मेरी प्यारी बिंदु फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। और इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा अंतराल।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम ओ।
4: गीत संगीत,
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम की महफिल का। कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपकी शाम को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम के तहत कुछ चुनिंदे बेहतरीन नगमे। उम्मीद है आप कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

आप सुन रहे हैं गुरु फिल्म से बेहतरीन गीत गुलजार के लिखे एआर रहमान की धुन और आवाज दी है एआर रहमान, चिन्मयी मुर्तुजा खान और कादिर खान ने।

0: मोहित चौहान की जादुई आवाज में आप सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का ये बेहद ही लोकप्रिय बेहद ही खूबसूरत गीत। श्रोता मित्र आपको बता दें कि संगीतकार है प्रीतम और इस खूबसूरत गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने। जी हाँ श्रोता मित्र आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। दोस्तों फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे शाम की महफिल कार्यक्रम का यह अंतिम गीत गदर 2 फिल्म से नीति मोहन, विशाल मिश्रा और अन्य साथियों की आवाजों में। श्रोता मित्रों, संध्या बेला हो, खूबसूरत संगीत से भरा माहौल हो और अपने किसी खास का साथ हो, फिर इसे खूबसूरत शाम और क्या हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ, जी हां श्रोता मित्रों, शाम की महफिल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप अरुणाचल।

0: recorded 1,70,746 suicide cases in 2024, and these are the reports shared by National Crime Record Bureau. Well, these are the cases which are reported in police. But suicide as a term is so stigmatized that many cases, in fact, doesn't go reported. However, in Arunachal, there was a declination of 14.1% in 2023 in comparison to 2025. However, we will not delve much into this discussion or what causes suicide, but we will focus more into what are the ways to prevent it, the warning signs, and what are the ways where we can protect our loved ones, families, and friends from such tragic incidents. To join with us today, we have two esteemed panelists, Gadam Atta, Counselor Telly Manas, Regional Mental Hospital, Mitpu, Papumpare District, Dr. Lair Itter, Research Scientist, ICMR, Rajiv Gandhi University, and Member of Child Welfare Committee, ICR. Before moving ahead, here are some reports.
1: मानसिक स्वास्थ्य सहायता को सुलभ बनाने के लिए टेली मनास सेवा उपलब्ध है। जरूरत होने पर 1-4-4-1-6 या 1-800-89-1-4-4-6 पर संपर्क किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में 3 सितंबर 2026 तक टेली मनास पर कुल 7649 कॉल दर्ज की गई। इनमें 3823 यूजर इनिशिएटेड और 3826 टेली मनास इनिशिएटेड कॉल शामिल हैं। जिलेवार आंकड़ों में पापुमपारे में सबसे अधिक कॉल दर्ज की गई, 313 टेली मानस इनिशिएटेड और 260 यूजर इनिशिएटेड। कॉल वर्गीकरण में 74.87% रूटीन, 16.27% सूचना संबंधी और 6.90% इमरजेंसी कॉल दर्ज हुई। उम्र के आंकड़ों में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी 84.2% रही। जेंडर के आंकड़ों में पुरुषों की हिस्सेदारी 61.301%, जबकि महिलाओं की 37.266% रही। रिपोर्ट की गई शिकायत श्रेणियों में उदासी और संबंधित लक्षण 34.52%, परीक्षा, कार्यस्थल या रिश्तों से जुड़ा तनाव 15.8% और चिंता, पैनिक या फोबिया से जुड़े लक्षण 12.31% रहे। 2 सितंबर को कुल 22 कॉल दर्ज हुई, 6 यूजर इनिशिएटेड और 16 टेली मनास इनिशिएटेड। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी में मदद लेने में संकोच न करें।
0: थैंक यू सो मच लेयर और गदम for your presence here. We are really fortunate to have you both here. No? So moving ahead, I would like to understand from both of you, because both of you, although it is from the same, department, but you're working on a different aspect. Dr. Lair, if you can tell us what is ICMR project and what are your expertise on it?
2: ये टॉपिक बहुत ही टैबू है अरुणाचल में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मेरा जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जहां पे हमें पापोमपारे और आईसीआर में 70+ इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन में जाके वी हैड टू गिव देम ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ एंड सुइसाइड प्रिवेंशन। वहां पे ट्रेनिंग में इम्पोर्टेंटली वी वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेट फॉर द लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द स्टेट। तो अगर आपका स्कूल में काउंसिलर नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट के थ्रू वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम विद इन द इंस्टीट्यूट। तो हम लोग टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स को ट्रेन करके वी ट्राई टू बिल्ड अ टीम, जिसके थ्रू अगर कुछ ऐसा इश्यूज भी होता है वो एड्रेस कर सके। एंड रेफरल्स वर अगेन मेड टू टेली मानस प्रोफेशनल्स एंड ट्रिम्स के साथ हम लोग नेटवर्किंग करके ट्राई किया है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली आवर प्रोजेक्ट इज अबाउट।
0: सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बेसिकली?
2: द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2024 एंड इट गो ऑन टिल आई थिंक नेक्स्ट ईयर, सो प्रोबेबली अराउंड 3 इयर्स का है प्रोजेक्ट।
0: वेरी होपफुल दैट समथिंग रियली इम्पैक्टफुल विल कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज आई बीन हियरिंग about this project since you said 2024, right?
2: Yes, so yeah, fingers crossed.
0: So Gadam, would you like to tell us what Telly Manas is and how, what are the ways it is helping the individual to, you know, towards mental health?
3: So Telly Manas is an initiative from the government side. Waha kya rehte hai ki it's a 24/7 toll free number na, so it's 14416. Anybody can call regardless of any age. So we do get calls like at night, day, and it's like suicide cases bhi rehte, not exactly suicide, but then people have suicidal ideation ki aisa rehte ki na, I want to die, mar jaane mein man ho raha, I'm going through this and that. So these are the calls we are dealing with. And it's a good thing ki all the counselors are able to like connect with the people out there. And I think it's been impactful thoda sa because wahan kya reh raha hai ki we get calls on daily basis. Aisa nahi hai ki ek din kam reh gaya. We do get calls all the time. So I think it is creating an impact to the society out here.
0: Yes, so I'm a bit curious on like, do Telemanus keep set data on like, kitna call aaya hai, like the, on the gender aspect, ladki ka zyada calls aata hai kya ladka ka, and like, you know, the categories kaisa hota hai, regarding mostly kya ka bare mein calls aata hai aplo?
3: Yeah, we do have categories like males, we have to like give out some information, as in like male hai, female hai, age range rehta hai, and also the districts. कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कॉल सा है वो रहता है एंड इश्यूज आर लाइक मेनी है ना रिलेशनशिप इश्यूज स्टडीज इश्यूज लाइक फैमिली प्रेशर और इफ नॉट लाइक द यूज ऑफ सब्सटेंस वी कैन सी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड लाइक आई सेड कि पीपल डू कॉल व्हेन दे फील दे हैव द सुसाइडल थॉट्स यू नो आई वांट टू डाई व्हाट डू आई डू आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू दे फियर जजमेंट सो मच वहां पे क्या रहते हैं कि वी डू गेट सच कॉल्स
0: Yeah, so in especially in Arunachal, wherein like on my personal experience as well, like hum log zyada sharing ek culture nahi hai. We don't know how to verbalize our thoughts. And agar koi bol raha hai ki humko dukh lag raha hai, acha nahi lag raha hai, to zyadatar bol dete ki ye natak kar raha hai. You know, like kya itna dukhi hote rehte hai and all that. So, what are the stigmas attached to suicide? And how we can identify like ki okay this person truly needs help
3: suicide ka stigma kya rehta hai ki mostly what I have seen hai na people would just say ki oh that was a cowardly act hai na darpok tha to kar liya they don't understand ki suicide is mostly because of a very painful psychological stress na bahut pain rehta hai like jaise ki physical pain mein we are unable to deal with it aisa rehta hai na so people they can't like understand the fact ki even though it's not visible dikh nahi raha but people go through a lot so aisa coward hai darpok tha life ko handle nahi kar paye har kisi ko stress hota hai that is the big stigma that's the like major reason that children or anyone in the family they are unable to come up and say ki you know ki I am having such thoughts because they know ki if they go there ye comment milega ki you know hey darpok hai hey kuch nahi hai stress sabka rehta hai They don't understand na they have tried their best but last option un logo yahi lag rahe to like pain ko kam kaisa karna whatever they are going through na that is the stigma
2: like there is a very big taboo around ki conversations on suicide itself will encourage suicidal ideation yes. jabki research has found ki what matters is aap suicide ka bare mein kya baat kar rahe not ki aap just suicide ka mention kar rahe jaise right now we are having a discussion on suicide This is still a topic about suicide. Lekin this is potentially going to decrease the risk. Kyunki bahut sara aapko awareness dega. We are going to talk about a lot of prevention and warning signs jaise aapne bataya. To agar aapka koi friends ya close family member bhi agar zikr karta hai suicide ke bare mein. I would encourage people to not like back off or get scared. Isko bare mein achcha se openly discuss karke hi hum log मतलब एक सोल्यूशन में या एक इंटरवेंशन में पहुंच सकता है उसी के कारण ही वी वर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन अर्लियर टेलीमानस इतना सक्सेसफुल क्यों है बोलने से हम लोग का आदमी लोग इतना वर्बल नहीं है तो फाइनली नाउ दे आर गेटिंग अ चैनल टू ओपन अप विदाउट बीइंग जज्ड विदाउट देयर आइडेंटिटीज बीइंग रिवील्ड एंड दैट इज आई थिंक व्हाई टेलीमानस भी व्हेन वी गो टू द फील्ड ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड अस कि टेलीमानस का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हम लोग भी टेलीमानस को बहुत एडवर्टाइज करते हैं व्हेन वी गो टू आवर रिसर्च प्रोजेक्ट आई मीन टू आवर ट्रेनिंग्स सो या दैट्स जस्ट वन स्टिग्मा दैट आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस
0: सो लाइक आई थिंक माय आइडिया ऑन वुड बी मतलब सही है क्या नहीं है दैन हम नहीं बोल सकता है लेकिन इफ ए पर्सन फील सुसाइडल और मतलब व्हाट आर द कॉमन सुसाइडल बिहेवियर्स that we can identify ki matlab hota hoga na some categories where you can say okay this person is in a endangered zone abhi isko matlab desperate need ka zaruri hai so what are some signs that family friends can look up to with a friend who is like relevantly feeling very depressed kuch signs
3: jaise ki like we have this na suicidal thoughts first rehte hain so wahan pe kya rehte hain ki people start talking about you know I want to die Like, they might just casually.

0: actually bring up the topic like while talking na essay and then their ideation jahan pe aisa rehte hai ki na passive or active jaisa rehte ek mein aisa rehte ki they don't think about like intend to like khud ko marna but they say aisa ki you know ek car aake humko maar dene se theek hai abhi hum building ka upar khada hai to gir jane se theek hai so that it won't seem like a suicide but accident but they are ready like welcoming if it comes I'm ready for that so if they talk like that agar wo aisa baat kar rahe na so that's a hint of like calling out for help na ki I just am done with my life marna hi hai kuch ho jao humko to acha hi nahi rehna hai and there are plannings as well like you'll see sudden change in people sometimes na jaise ki will banane shuru karega kabhi kabhi achanak se mera सामान इसको चला जाओ ऐसा ना विल बनाने शुरू करते हैं और गिविंग आउट देयर फेवरेट थिंग्स टू देयर फेवरेट पीपल है ना तो एक प्लानिंग भी रहता है कभी कभी इंसानों का ना जो सुसाइडल पूरा प्रॉपर प्लान करते हैं दिस डे दिस डेट दिस काइंड ऑफ मेडिसिन है ना तो वैसा रहता है एंड सम पीपल वुड टॉक विद द इंटेंट ऑफ डूइंग इट हम तो करके ही रहेगा ऐसा अभी तो करना है आई एम सो डन विद माई लाइफ सो लाइक ऐसा क्या रहता है कि जब बात कर रहे होते पीपल out here like anywhere mostly what we do is dismissive mat socho aisa but that is a big cry of help na wahan pe kya rehta hai ki self harm bhi ek rehta hai big cry of help wo first stage mein rehta hai so wahan pe dismiss nahi karke it's our role not only the roles of professionals but the community the people around ki ask hai na dismiss karne se acha what happened tell me I'm here because what they want is someone to hear out cry of help jo aisa madad karo sirf nahi hote but these are the signs
1: a lending ear basically that's what they really need right so do you like to
2: sometimes signs can be very subtle also okay like it can be just that somebody jo tere normal appetite tha abhi khana hi nahi kha raha hai ya over kha raha hai ya jo normal sota tha abhi wo zyada hi so raha hai ya wo sota hi nahi pura dark circles aap dekh raha hai and even pehle jo dost log ka sath hang out karta tha ग्रुप एक्टिविटीज करता था अभी अकेला बैठने शुरू हो गया क्योंकि सुइसाइड ऐसे फटक से नहीं होता है ना इट स्टार्ट्स विद स्ट्रेस दैट बिकम्स ऑनगोइंग डिस्ट्रेस देन जाके वो एक आपका डिसऑर्डर बन जाता है वो डिप्रेशन हो जाओ एंजाइटी हो जाओ एंड देन तब जाके आपका आइडिएशन स्टार्ट होता है सुइसाइडल का तो उससे पहले आपका हमेशा कुछ ना कुछ साइन ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस का कुछ दिखाई देगा डिस्ट्रेस का तो ये सब चीजें जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं One thing that I share, हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं स्कूल में is we tell the teachers कि sometimes personal hygiene नहीं होना भी एक साइन होता है ऑफ डिस्ट्रेस हम उल्टा टीचर्स लोग डांट देते हैं ना तुम गंदा हो क्या है लेजी हो क्या है लेकिन कोई अगर पीक डिप्रेशन में है तो वो इंसान पर्सनल हाइजीन के बारे में सोचेगा ही नहीं वो सिर्फ अपना फंक्शनिंग का बारे मतलब जस्ट टू गेट आउट ऑफ बेड ऑल्सो इट्स सच अ बिग टास्क वो क्लास तक पहुंच गया उतना ही है उसका वो ब्रश किया है कैसे दिख रहा है कपड़ा अच्छा है कि नहीं नहाया कि नहीं वो सोचेगा ही नहीं तो समटाइम्स बेसिक वेरी सटल नुआंसेस लाइक दिस ना और नुआंस्ड सिम्टम्स भी होता है जो हम लोग ओवरलुक कर देते हैं तो उसमें आई थिंक लाइक शी सेड वी हैव टू लेंड अ लिसनिंग ईयर एंड नॉट जस्ट डिस्क्रेडिट इट एंड डिसमिस इट
1: सो वी विल डिस्कस मोर लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट इज टेलीमानस
3: भारत में आत्महत्या की रोकथाम मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा अहम मुद्दा है एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1,70,746 आत्महत्याएं दर्ज हुईं। आत्महत्या की राष्ट्रीय दर 12.2 प्रति 1,00,000 आबादी रही रिपोर्ट में दर्ज प्रमुख श्रेणियों में पारिवारिक समस्याएं 33.5%, बीमारी 18% और ड्रग एब्यूज या एडिक्शन 7.6% रहा वहीं एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 128 आत्महत्याएं दर्ज हुई थीं, जिनमें 79 पुरुष और 49 महिलाएं थीं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की समय पर पहचान किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना आत्महत्या की रोकथाम में महत्वपूर्ण हो सकता है
1: We were talking on, students, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप बता रहा था ना तो इन दिस एज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है ऑल्दो इट इज अ बून फॉर मेनी बट एट द सेम टाइम आई रेड समवेयर दैट कि इट हैज क्रिएटेड दिस एंजाइटी होने शुरू हो रहा है बच्चा लोग को एंड अनसर्टेनिटी होने शुरू हो रहा है कि हम लोग का जॉब कैसा होगा कि नहीं होगा एंड ऑल दैट राइट सो would you

0: tell us, like, what are the different aspects or different mental stress students these days they are going through? And directly isme bhi baat karte the ki prevention, preventive measures kya ho sakta hai, with your answers and then the preventive measures. Yes, maybe we can start with Gadam and then
1: Let's start with the prevention itself.
0: So,
1: prevention mein, like this platform itself, na, primary intervention agar hum log le lete hai, like talking about it openly so that it's not a taboo, hai na, and to kya rehta hai ki educated ho jaane se people also know ki judgment nahi rehna hai na. To basic se hum log start kar sakte hai, like talking about pehle kaisa tha, suicide commit kiya. It's not a crime that it has been committed. It's rather like change to the ye line ko change karke someone died by suicide, hai na, waisa bol ke start kar sakte hai, because commit bol se crime sun ke hi like it becomes a taboo na. Fir like parents log bhi bol sakna chahiye when the, in the school itself, jaise ma'am log kar rahe na, ki it is happening with us, it is within us, it's not something bahar ka foreign cheez hai na, it is happening with our children, our friends, family. So basically like judge nahi karke talking about it openly, like, and then help kahan mein hai batana, hai na, to wo primary intervention jo acha pillar jab ban jayega to physical health ka jaise ho ki people will know ki acha if I'm having this I have to go to the hospital, hai na, without fearing the judgment of the society itself. Then there could be secondary intervention jahan mein crisis intervention jaisa ho ki ho raha hai to kya karna hai, hai na, being calm. You know, like when your child or friends talk about it, aisa na ki aisa ho raha hai, suicidal thoughts aa rahe hai, tab kaisa karna hai? So be calm, you know, don't overreact, don't dismiss it. Sometimes we do. And then one important thing is guilt tripping. Dusra ka nahi socha hai ki aap mar jayega soch rahe. That is the like red flag, I would say, in this topic, you know. The person is already going through so much, is already thinking ki I'm a burden to the family or the society, and now you're guilt tripping the person saying ki dusra ka socho, mummy papa ka socho, behan ka socho, society socho, soch ke na wahan pahunch gaya na. So just tell them ki you know, like, think ki we are here for you, tumhare liye support ke liye hai, we are there to hear you. Wo ek safe space dena
2: very important.
1: And then the tertiary would be follow-up. It's very important. If someone talks about it and attempt nahi kiya, doesn't mean ki aap chhod do. You have to follow up beech mein, because you never know na ki kya soch aa jayega. So it's very important jo pehle attempt kar chuka hai ya thoughts aa rahe hain unko follow up rakhna. Once in a while be friendly and ask, are you doing okay or not na. This are the intervention. And jahan help zaruri hai, telemanas pe pahuncha dena, connect kar dena. Yeah, hospitals, doctors, everyone is available out there. So, form a connection kar dena. That is important.
0: Actually, one thing hum bachpan se hum bhi sun ke aaye hai ki if a person seeks for psychiatric or psychological help, to bolte kya ye to pagal ho gaya kya? No, they going to psychiatrist or let's say therapy jana mein hi matlab aapka stigma lag jata hai. It's so shameful for many people to say ki nahi, I'm taking help from, I mean, I'm therapy le raha hai. वो चीज भी अपना में इतना टैबू हो गया है, राइट? सो यू, आई थिंक यू हैव वर्क्ड इन वन पेपर आल्सो वेर इन यू नो वेर इन दिस वेस्टर्न साइकोलॉजिकल मॉडल्स डजंट रियली फिट हियर. जैसे गोइंग टू द थेरेपी बात करेगा, हम लोग यहाँ फिट नहीं होता बिकॉज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग है, बिलीव्स अलग है, फैमिली सेटअप, वी आर सो रूटेड टू दिस आइडिया ऑफ टुगेदरशिप, किनशिप में, ये सब बहुत सारा फैक्टर्स है. तो Arunachal specific, when you see, right, when we talk about Arunachal, what are the ways where we can, you know, work on it? Ek family or let's say ek rishtedari kaisa contribute karta hai in uplifting the person's spirit or taking an individual out of that doom hole. So kuch any idea on that?
3: Jab hum counseling deta tha, a lot of clients open up hota tha, but ye cheez jo zyada jo Gen Z ya young bachcha log hai, जो एटलीस्ट अवेयर है कि ओके मेरा डिप्रेशन बोल के भी एक चीज हो सकता है, एंजाइटी बोल के भी एक चीज हो सकता है, उन लोग जो वोकलाइज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. लेकिन काउंसलिंग सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस मॉडर्न एज, राइट? इट्स ऑल्सो शुड बी अवेलेबल टू द अदर आपका एज रेंजेस एंड पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज एज वेल, जिसका पास शायद वो वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. तो व्हाई आई फेल्ट लाइक देर इज अ नीड टू कंटेक्चुअलाइज आवर अप्रोच टू मेंटल हेल्थ थेरेपीज, बिकॉज हम जो थेरेपीज हम जो सीखा था लाइक मेरा प्रैक्टिस में थियोरीज में पढ़ो या फिर इंटर्नशिप्स में, वो हम यहां जब अप्लाई करने लगा थोड़ा सा हमको गैप फील किया, क्योंकि यहां पे जैसे सिंपल चीज जैसे हम लोग का अटैचमेंट मॉडल बोलता है, अटैचमेंट मॉडल बोलता है कि आपका प्राइमरी केयर गिवर का साथ बच्चा का अटैचमेंट होना है, नहीं होने से वो बच्चा का टेंडेंसी हो सकता है कि वो उसका अटैचमेंट प्रॉब्लम्स हो इन द लेटर एडल्टहुड, कुड बी फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है. अभी ये चीज को आप वेस्टर्न एंगल से देखेगा तो हम लोग का यहाँ पे फिट इन नहीं होगा, बिकॉज वी हैव दिस अटैचमेंट टू मल्टीपल केयर गिवर्स. हम लोग को छोटा में मोए लोग, की लोग, चाचा चाची सब लोग पाला है ना, तो वी हैव दिस अटैचमेंट बॉन्डिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट फिगर्स. बट ये अगर कोई बाहर वेस्टर्न लेंस वाला आके देखेगा, वो इसको थोड़ा देखेगा कि अरे ये तो माँ पिताजी से इतना क्लोज नहीं है, दादी माँ से क्लोज है, इसको डिसफंक्शनल बोलेगा. सेकेंड चीज है कि हम लोग का इमोशनल कम्युनिकेशन. मेरा पीएचडी वॉज बेस्ड ऑन फैमिली डायनामिक्स, तो मेरा पीएचडी में हम जब देखा है कि बहुत लोग माँ पिताजी का साथ वर्बली क्लोज नहीं है, लाइक वेन द क्वेश्चन वॉज आस्क, आप इमोशनली शेयर करता है क्या अपना फीलिंग्स को, प्रॉब्लम होने से पूछता है क्या, मदद मांगता है क्या, तो उन लोग बोलता है नहीं, लेकिन दे स्टिल कंसिडर दैट अ वेरी इमोशनली इंटीमेट रिलेशनशिप. सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इमोशनल कनेक्शन इज वेरी डिफरेंट हम लोग का यहाँ पे एज कम्पेयर टू जो हम लोग का वेस्टर्न बुक्स या थ्योरीज वो कर रहे हैं. तो माई रिसर्च इज मोर फॉर द थेरेपिस्ट, मोर फॉर द साइकोलॉजिस्ट टू बी एबल टू सॉर्ट ऑफ थोड़ा वाइडन अपना अप्रोच ना एंड अंडरस्टैंड यहाँ का हम लोग का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एंड
2: रेदर देन वन सेट फिटिंग ऑल.
3: यस यस, वहां का मॉडल को यहाँ ले, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग विद आवर प्रोजेक्ट. आवर प्रोजेक्ट इज एन इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च जहां पे हम लोग मॉडल को टेस्ट आउट कर रहे हैं. हम लोग ऑलरेडी एक मॉडल बना चुका है जहां पे स्कूल में आपका थ्री टायर आपका ट्रेनिंग होता है, बच्चा लोग को, टीचर्स को और प्रिंसिपल को. ये कितना इफेक्टिव है अरुणाचल में वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर इससे इफेक्टिव रिजल्ट्स निकला देन वी विल सजेस्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मे बी इम्प्लीमेंटेड एज अ नेशनल पॉलिसी ना, नेशनल लेवल पॉलिसी. तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं. बट इसमें भी मेरा ऑब्जर्वेशन में हमको लग रहा है कि जो हम लोग का हाई स्कोर्स हम लोग देख रहे हैं, हाई स्कोर्स इन द सेंस हम लोग का जो सुइसाइडल आइडिएशन हाई होने वाला हर स्कूल में हर इंस्टीट्यूट में निकल ही रहा है. आपका एटलीस्ट दो से तीन बच्चा हो गई है एवरी स्कूल इंस्टीट्यूट में जहां पे जिसका सुइसाइडल आइडिएशन है, ये हम लोग देखा है. बट इसको भी बताने का तरीका भी बच्चा लोग का थोड़ा अलग है. जैसे हम लोग आपका वेस्टर्न थ्योरीज में क्वेश्चनर्स का थ्रू आपको करता है ना सेल्फ रिपोर्ट, जैसे आप मेरा क्लाइंट है तो आप खुद टिक करके बताएगा कि हम सुइसाइडल है कि नहीं. लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि आपको जब क्वेश्चनर दे रहा है आप नो नो टिक कर रहा है, लेकिन हम आपको जब एक्चुअली में पूछ रहे हैं तब आप हाँ बोल रहे हैं. तो वो मेथड भी क्या वे में हम लोग को पूछना चाहिए वो सब को भी हम लोग को थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, हाँ केयरफुल होना चाहिए.
2: एंड ऑल्सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो लाइक लैंग्वेज बैरियर भी होगा ऑफकोर्स कि आपका क्वेश्चनर क्या लैंग्वेज में है फॉर अ पर्सन टू गेट उतना लेवल का कम्फर्टेबली वो लिख पाएगा टिक मार्क कर पाएगा ना. यू नो 2025 में सुप्रीम कोर्ट एडेड मेंटल हेल्थ अंडर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और गवर्नमेंट भी एनएपी 2020 में बहुत फोकस कर रहा है. बट वी टॉक अबाउट थेरेपी यू नो काउंसिलिंग एंड ऑल दैट, बट ग्राउंड में कैसा है? आप भी ग्राउंड में काम किया, आप भी ग्राउंड में काम किया, मॉनिटरी हेल्प कैसा है? I would love to know on that. And what way government can improve this system? Of course, you can give us more suggestion. Like what ways की एक comprehensive और cohesive एक system बन सकता है कि mental health all improve हो. Even you are also a mental health worker, right? So what ways the system can be improvised a little bit?
1: Well, government तो अभी it's working ना, district में भी we have CPs and counselors ना, and then mandatory तो बना दिया. It's just the hiring process और ज़्यादा speed up होने से थी कि because बहुत सारा स्कूल में काउंसलर्स नहीं है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स है ना,
4: इट इज
1: एंड वहां क्या रहते हैं कि स्कूल काउंसलर अब बन भी जाओ बिकॉज मोस्टली वी रिक्वायर देयर बिकॉज स्टूडेंट्स ज्यादा पॉपुलेशन वहां रहते हैं ना. द जॉब ऑफ काउंसलर इज वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन यू गो इन देयर बिकॉज इट्स न्यू टू देम, तो वहां पे थोड़ा जॉब का वो रह जाता है, ड्यूटीज कैसा कैसा रहता है ना. तो वहां पे भी ऐसा मैंडेट कर देना कि दिस इज द काउंसिलर्स जॉब ओनली, ये कर दो बिकॉज द काउंसिलर कान बी टीचिंग और टेकिंग द क्लास एंड टेक काउंसिलिंग सेशंस बिकॉज इट टेक्स टाइम ना टू टॉक टू द चिल्ड्रेन. sometimes it might take an hour

0: आप सोचिए प्रपोर्शन कितना होगा, 1:400, इट्स अ लॉट टू टेक इन, इज़न्ट इट? सो प्रपोर्शन के हिसाब से भी इफ एट ऑल गवर्नमेंट कैन पुट आउट लाइक जॉब, जैसा नहीं होते क्या 1:5 के लिए एक काउंसलर और बाकी हायर स्टूडेंट्स के लिए एक, बिकॉज दैट्स अ लॉट फॉर अ काउंसलर टू टेक इन, इतना ज्यादा बच्चा को एक साथ. चिल्ड्रंस डू कम टू यू, पीपल आर कमिंग, अभी पता चल गया ना, जैसे there is, like जैसे टेलीमानस में भी ऐसे की कॉल्स आता है, ऐसा नहीं कि एक दिन भी बिना कॉल करने ही जाएगा, लाइक आफ्टरनून मॉर्निंग नाइट आता है, एंड इवन इन द स्कूल्स है ना मैम आता है, लाइक चिल्ड्रन डू कम बिकॉज दे आर नॉट कम्फर्टेबल टॉकिंग एट होम, सो दे नीड समवन टू हियर यू आर लाइक विदाउट एनी जजमेंट. तो वहाँ पे जस्ट अगर प्रपोर्शन अच्छा रह जाता है कि थोड़ा 200:1 रह जाओ, बिकॉज 400 इज अ लॉट, एंड देन अगर कोई इंस्टीट्यूट रह गया जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स, एक काउंसलर बिठा दिया, कितना काम कर पाएगा? वर्कशॉप कंडक्ट करेगा ना, वन ऑन वन काउंसलिंग करेगा, दैट्स अ लॉट राइट? तो इफ अगर इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करो तो ज्यादा पॉपुलेशन को रीच आउट कर पाएगा, एंड देन डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग रियली नाइसली.
1: मैन पावर चाहिए, हम लोग का मेंटल प्रोफेशनल्स बहुत कम है, बट साथ ही साथ उनका सैलरी भी देखिए ना, सैलरीज आर ऑल्सो वेरी लेस. तो इवन इफ समबडी वॉन्ट्स टू हेल्प, इट्स नॉट सस्टेनेबल. कितना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे अच्छा डिग्री लेके आके दे हैव गॉन इनटू सम अदर स्ट्रीम, बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल टू बी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इन अरुणाचल प्रदेश, एंड दैट्स अ रियलिटी. हम लोग का साइकोलॉजी का स्कोप नहीं है यहाँ पे, कॉलेजेस में नहीं है, स्कूल्स में नहीं है, आप लोग का इवन साइकोलॉजी ऑफरिंग यूनिवर्सिटीज डोंट हैव अ स्टूडेंट काउंसिलर. सो दैट इज द ग्रिम रियलिटी. एंड अ लॉट ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोई कोई जगह में देखा है कि काउंसलर का जो जॉब है उस पर आपका नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाला पर्सनल को आप हायर किया है. तो काउंसलिंग इज अ वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशन, आपका कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग चाहिए यहाँ पे? हाउ आर यू सपोज टू हैंडल समवन्स लाइफ, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो दिया जा रहा है विद समबडी हु इज नॉट ट्रेन्ड. So these are still some aspects that I think the government should look into. Salary, of course, being one of them, very less. And jaise aapne bataya, manpower also should be simultaneously increased.
2: So I think we are coming to the tail end of our conversation, but very briefly, like, na, if someone is watching and silently suffering, what would be the one message would you like to give? Very briefly, on a very brief note. Maybe you can share the Telemanas helpline.
0: Yep. If you are going through such things, है ना, अगर आपको सोच ऐसा हो रहा है कि आप किसी को बात नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपका सोच suicidal thoughts जैसा आ रहा है, और anything related to stress, mental health, कुछ भी हो, you can always reach out to Telemanas. Number 14416 है. It's 24/7, like night, day, आप कहीं से भी call कर सकते हैं. It's just one phone call away, है ना. We counselors are available all the time to hear you out without any judgment, so please do reach out to us when you need help.
1: And it's okay to suffer as long as you're okay to seek help. It's not a taboo to seek help. Hum bhi kabhi kabhi therapy lete hain, being a mental health professional, because that's just like aapka agar mood kharab hai tab bhi aap counseling le sakte hain. It's not as jo hum log ka myths hota hai na ki sirf pagal hi le sakta hai counseling, aisa nahi hai. It is available to all kind of people with all kinds of levels of functioning. Aapka ek din aapka husband ka sath jhagda ho gaya, aap tab bhi counseling session, ek counseling session leke aap, you will feel better. So it doesn't mean ki aap counseling le raha hai ya help mang raha hai ki aap pagal hai ya aapka sath kuch kharab hone wala hai. Abhi bahut sara log openly discuss karte hain apna mental health journey.
3: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप अरुणाचल कार्यक्रम. आपको बताते कि आगे आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार.

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदि श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जारी है। आप जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए श्रोता मित्र, हमारे अरुण FM के कार्यक्रमों को आगे जारी रखते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज के हमारे कलाकार फनकार हैं जिन्हें मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी आवाज दिलों को सुकून देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका KS चित्रा की। तो उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आपको सुनवा रहे हैं विरासत फिल्म का एक खूबसूरत गीत कुमार सानू और KS चित्रा की युगल आवाजों में।

27 जुलाई 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी के एस चित्रा, जी हाँ, जिनका

पूरा नाम कृष्णन नायर सांता कुमारी है। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते बचपन से ही उनकी रुचि संगीत में थी। उनके पिता कृष्णन नायर ने उन्हें संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग दी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपनी पकड़ मजबूत की और संगीत को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बनाया। 1979 में चित्रा ने अपने करियर की शुरुआत की, जब उन्होंने पहली बार मलयालम फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। हालांकि ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई, लेकिन इससे पहले ही उनकी आवाज ने कई भाषाओं में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। मलयालम में शुरुआती पहचान के बाद उन्होंने तमिल फिल्मों में इलैया राजा के साथ काम करना शुरू किया। 1985 में इन्होंने तमिल गाना पूजा कट्टा गाया, जिसे काफी सराहा गया। यहीं से उनके करियर को एक नई दिशा मिली। 1996 में फिल्म सिंधु भैरवी के गाने के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और कई अन्य भाषाओं में गाने शुरू किए। वो लगभग 36 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गा चुकी है, जो कि किसी भी भारतीय गायिका के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी के कारण उन्हें मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ ही आपको अगला गीत सुनाते हैं।

इस गीत को आप सुन रहे थे रोजा फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा की आवाजों में। जी हां श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका केएस चित्रा की। 1990 के दशक में चित्रा दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय गायिका बन चुकी थी। खासकर तमिल और तेलुगु फिल्मों में उनकी आवाज हर फिल्म में सुनाई देती थी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 1991 में फिल्म लव से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ मिलकर साथिया तूने क्या किया गाना गाया। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद उन्होंने एआर रहमान के साथ कई यादगार गाने गाए, जिसमें रोजा फिल्म का ये हसीन वादियां, बॉम्बे फिल्म का कहना ही क्या, 1997 में फिल्म विरासत का गाना पायले छन छन शामिल है। इसके अलावा उनके गुमसुम गुमसुम, रूप सुहाना लगता है, मेरे यारा दिलदारा, कसम की कसम और कहीं तो होगी वो जैसे गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए श्रोता मित्रों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लव फिल्म से।

0: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
1: ब्रेक के बाद कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी का पुनः स्वागत है। श्रोता मित्रों, केस चित्रा ने फिल्मी गीतों के अलावा कई भक्ति गीत, क्लासिकल रचनाएं, गजल और पॉप एल्बम में भी अपनी आवाज दी है। उनका पिया बसंती एल्बम काफी लोकप्रिय रहा। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी परफॉर्म्स किया है। तो चलिए श्रोता मित्रों, फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं पिया बसंती एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग।

श्रोता मित्रों, अवार्ड्स की बात करें तो चित्रा के पास नेशनल अवार्ड्स की पूरी बारात है। उन्होंने अपने करियर में 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जो किसी भी पार्श्व गायकों का सपना होता है। ये अवार्ड उन्हें तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्मों के गानों के लिए मिला, जिनमें सिंधु भैरवी, विरासत, ऑटोग्राफ जैसी और भी कई फिल्में शामिल है। इसके अलावा उन्हें संगीत क्षेत्र में उनके योगदान के चलते भारत सरकार की ओर से 2005 में पद्मश्री और 2021 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। चित्रा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बार सम्मानित किया गया है। 2003 में उन्हें ब्रिटेन की संसद में सम्मान मिला और 2024 में उन्हें द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स का खिताब भी मिला। फिल्मफेयर साउथ अवार्ड भी उन्हें 10 बार मिल चुका है। इतने पुरस्कार और सम्मान इस बात का प्रमाण है कि केस चित्रा सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि भारतीय संगीत की एक मजबूत पहचान है। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार का। ये अंतिम गीत बॉम्बे फिल्म से KS चित्रा और अन्य साथियों की आवाजों में, और इसी के साथ ही मशहूर गायिका KS चित्रा पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्रों, आगे आप सुन पाएंगे निशेष श्रोताओं का समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इस सफर में आपके साथ हैं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। जी हाँ श्रोता मित्रों, इस वक्त शाम के 7:10 हो रहे हैं, तो इसके साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जिसके तहत लीजिए पेश है कुछ बेहतरीन नगमे। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नूरी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

नूर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की जादुई आवाज में। जी हाँ दोस्तों, जिसे लिखा है जानिसार अख्तर ने। आपको बता दें कि फिल्म नूरी के गाने और संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इस गीत के बोल और खयाम का संगीत इसे एक क्लासिक और सदाबहार गाना बनाते हैं। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही चलने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में ही, सनम बेवफा फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे अनाम फिल्म का ये खूबसूरत गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। आपको बता दें कि फिलहाल अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
1: संबंध संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है,
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
1: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे कुछ बेहतरीन सदाबहार गीतों का। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की युगल आवाजों में वारिस फिल्म से। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहे अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी

जी हाँ श्रोता मित्र, अरुण FM 103.1 MHz पर आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्र, जब प्यार किसी से होता है फिल्म के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजों में। आपको बता दें कि इस फिल्म के संगीतकार हैं जतिन ललित और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म के बेहतरीन गाने। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, इसमें मुख्य कलाकार के रूप में सलमान खान और ट्विंकल खन्ना है। आपको बता दें कि सलमान खान की बात करें तो सलमान खान का अंदाज, लुक और स्टाइल बेहद ही स्टाइलिश और क्लासिक क्लासिक था, अपने दौर से आगे माना जाता था। इस फिल्म में उन्होंने सूरज धनराज गिर का किरदार निभाया था, जो एक अमीर और लापरवाह युवा होता है। उनका यह अय्यास और दिलफेक अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया था। आपको बता दें कि फिल्म में उनके कपड़े, हेयर स्टाइल और सनग्लास का इस्तेमाल उस समय के युवाओं के बीच काफी ट्रेंड में आया था। उनके हर एक फ्रेम में एक अलग स्वैग और कॉन्फिडेंट नजर आता था। और आपको ये भी बता दें कि कई समीक्षकों और प्रशंसकों का मानना है कि सलमान खान अपने पूरे फिल्म करियर में इस फिल्म के दौरान सबसे ज्यादा नेचुरल और

गुड लुकिंग दिखे थे। पहली पहली बार जब प्यार होता है और अन्य गानों में उनका डांस और रोमांटिक अंदाज उनके चार्म को और चार चांद लगा देता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म के गाने। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का एक बेहद ही खूबसूरत गीत।

श्रोता मित्रों, इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू की युगल आवाजों में। इस बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि आप कहीं जाएगा मत, आगे आप सुन पाएंगे अरुणाचल प्रदेश के संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ज। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतः एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत। दोस्तों, जिंदगी जीने का नाम है, गुजारने का नहीं। माना कि हालात आज कुछ अच्छा नहीं है, पर हालातों से हार कर हम करेंगे भी क्या। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखना है, हर पल को जीना सीखना है। ये वो इसका उसका, नफरत भरी इन बातों से जितना हो सके खुद को दूर करें और खुद को उनमें शामिल करें, जहाँ से आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता हो, जहाँ से दिल को एक अच्छा सा एहसास मिल जाता हो। दोस्तों, इसी बात पर लीजिए पेशे कार्यक्रम का पहला गीत। वांचो भाषा में बहुत ही प्यार भरा गीत है, नावे वांगसू की आवाज़ में।

दोस्तों, अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आदि भाषा में। और जब आदि गीत की बात आती है तो यूं ही दिलो दिमाग में तालुत मिजे जी का नाम आ जाता है। और यही बड़े कलाकारों की पहचान है कि वो यूं ही हमारे दिलो दिमाग में बसते रहते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा आदि गीत सुनते हैं हम सबके अपने तालुत मिजे की आवाज में।

टोंगटंग थमपंग की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत। श्रोता इस वक्त आनंद ले रहे हैं अपने अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीतों का कार्यक्रम अपना गीत का, जो आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये निशी गीत बेंगिया बेरों और तादियापु की आवाज में।

श्रोता मित्रों, अरुणाचल प्रदेश की खासियत ही यही है कि वे अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ जितने जनजातियां उप जनजातियां बसे हैं, उन सब की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग संस्कृति और परंपरा है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं हर बार यही बात कहती रहती हूँ, मगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे श्रोता मित्र अपना गीत कार्यक्रम में गीतों का आनंद लेने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की विविधताओं को भी समझे, जाने और पहचाने। तो चलिए इसी कोशिश में आगे सुनते हैं गालो गीत गोतो अत की आवाज।

0: कार्यक्रम अपना गीत के अंत में आप सुन रहे थे चाओ कमजा द्वारा गाए सिंगपो गीत। तो श्रोताओ, इसी गीत के साथ हम आज का अपना गीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले कड़ी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सावधानी के 3 उपाय बिल्कुल न भूले। हमेशा हाथ धोते रहे, बाहर निकलने से मास्क पहने और 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखे। धन्यवाद।
1: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश की विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत। जी हाँ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ, पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
2: Guys, and welcome to the Western Music Program only on Akashwani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's playlist leans into soul, warmth, and a little bit of reflection. These songs have that easy, intimate quality to them, perfect for slowing things down and just letting the music sit with you. We're starting with Yeba and Yellow Eyes. It's a beautiful introduction to the set, with Yeba's voice bringing so much feeling without needing to overdo it. Yellow Eyes by Yeba.
3: Thank you.

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। जी हाँ, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 9 बज रहे हैं और अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। दिल की लगी ने कर दिया दोनों को बेकरार, दोहरा के दास्ताए मोहब्बत फिर एक बार, मजनू हमें और आपको लैला बना दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमा शाह बना दिया। जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा लीजिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफी की आवाज में, एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, और इसे गीत के बोल लिखे हैं शेवेन रिजवी ने और संगीत से सजाया है ओपी नायर ने।

श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गाने, और इस गीत का आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और अन्य साथियों की आवाज़ों में। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, और आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं अगला गीत भरोसा फिल्म से।

0: भरोसा फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अन्य साथियों की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में फिलहाल हम ले रहे हैं एक अंतराल।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे चौंधवी का चांद फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत चौंधवी का चांद फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे चौंधवी का चांद फिल्म से इस गीत का आशा भोसले की आवाज में। इस आखिरी नगमे के साथ अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की समाप्ति पर आ पहुंचे हैं और इसके साथ ही आप सभी से अलविदा कहने का वक्त भी हो चला है। उम्मीद है सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को पसंद आए होंगे, जिसे आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक का गैर अते तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपसे फिर होगी मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर, यानी हमारे पहले प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICARIARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश की हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है, तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी।
2: और जो पशुधन है, हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है, तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन, रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है, तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: तो वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या

0: होता है।
1: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मुख्यतः, जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है। और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो
0: जी
1: बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है,
0: मोटा
1: और
0: अनाज।
1: जी मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं। और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85 से 90% के आसपास दलहन भी बारहनी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र हैं जहाँ
0: जी
1: पर जल भराव होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहां की समस्याएं
0: अलग होती है।
1: अलग प्रकार की होती है।
0: आज के समय
1: परंतु
0: में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने
1: जी
0: की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है।
1: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं, और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के 1 या 2 दशक पहले की हम बात करें, तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था।
0: जी
1: अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन स्तर हम बना के रखते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है, उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घ काल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा, ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
0: डॉक्टर साहब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती हैं, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती हैं?
1: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण, और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ 2 से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रो फॉरेस्ट्री, या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा यह है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है। यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहां पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रो फॉरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो, और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
0: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
1: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद बेस्ड, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण है, किसान है जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं, और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है, और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है, और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश है, जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है
0: जी
1: उसमें, और ICR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काज

0: बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी।
1: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी। और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
0: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
1: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है। कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती। बीजीय मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर एफपीओ का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और जो बरानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बरानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
0: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो, और ICRISAT हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
1: ICRISAT जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है, और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, और ICAR का और जो ICRISAT का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके, उस पर बड़ा एक फोकस है।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
1: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए, तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्य तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशियंट है। आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा

0: सांद्रता में पोषक तत्व हो
1: जी
0: उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है। निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सबका उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर वर्मा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइज।

0: ते शामिल हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में बिना कोई विकेट खोए 20 रन बना लिए थे। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 149 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. India is the current chair of the influential grouping. Several world leaders will participate in the summit, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping are expected to arrive tomorrow. The BRICS summit will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi-led government has completely transformed the country's disaster management system and set the goal of zero casualty. Mr. Shah was speaking while chairing the third meeting of the governing body of the National Institute of Disaster Management in New Delhi. Mr. Shah said the government is focusing on three pillars, which are risk reduction, early warning systems and zero casualty. India and Russia today held talks to on joint production of civil passenger planes and potential deliveries and arrangements for 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu held discussions with Russia's Industry and Trade Minister Anton Elikhanov in New Delhi on joint manufacturing of civil passenger aircraft to meet the country's demand for regional air connectivity. The government has amended the Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 to tighten norms on price transparency, sponsored listings, search result manipulation and dark patterns. Under the amended rules, e-commerce entities will have to disclose the reduced price and prior price whenever a price cut is announced. India made a strong start at the World Para Shooting Championship, bagging 4 medals, including 1 gold, 2 silver and 1 bronze on the opening day of the event and Changwon in South Korea today. The Indian women's team of Mona Agarwal, Avni Lekhra and Millie Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi today. And that is the end of this news bulletin.
3: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Mohammad Zubair. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया यमन के लाल सागर तट के पास हूती विद्रोहियों की मौजूदगी के कारण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में खतरा बढ़ा और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन टुडे It saves life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
3: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत है
2: इंडियाज अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुंबकम दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ वी सपोर्ट अ सेफ सिक्योर पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी
3: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ पूरी मानवता तक पहुंचने चाहिए।
2: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
3: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उत्कृष्ट और कम लागत वाले अभियानों के कारण इसरो ने दुनिया भर में सम्मान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इसरो की क्षमताओं का लाभ किसानों और मछुआरों को मिल रहा है। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद अल जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। इसके बाद मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य का निर्माण विषय पर सत्र होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
4: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
5: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
4: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
3: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बो प्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलेखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच यमन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। खबरों के अनुसार हुती लड़ाकों ने यमन के रणनीतिक बंदरगाह शहर मोचा पर कब्जा कर लिया है और वे

0: अब अलमंदेब जल डबरू मध्य के करीब पहुंच रहे हैं। यह घटनाक्रम हुती और यमन के सरकारी बलों के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के दौरान सामने आया है। इससे वैश्विक समुद्री परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। यमन में लाल सागर तट के पास हुती विद्रोहियों की मौजूदगी के कारण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में खतरा बढ़ा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Houthis advance near Yemen's Red Sea coast, threatening Bab al-Mandeb Strait. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey. Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
2: ISRO, which stands at the heart of this journey, has earned global admiration for its excellence and cost-effective mission. Its capabilities serve farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management and navigation. More than 430 satellites from 34 countries have traveled to space aboard Indian rockets. ISRO's technologies and partnerships serve not only India but the wider world.
1: New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. India is the current chair of the influential grouping. Several world leaders will participate in the summit, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit.